0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: A very good morning आप सभी को सुप्रभात. आज शनिवार 22 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं.
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। सैटरडे आ गया है, वीकेंड का पहला दिन और सुबह के सुकून भरे समय में रेडियो मस्ती पर इट्स टाइम फॉर रिलैक्स। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और आज की सुबह हम शुरू करेंगे बिना किसी जल्दी के थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ी सी बातें और बहुत सारे खूबसूरत गाने के साथ। एंड एज यू नो, हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत सदाबहार गाने आपके नाम, द फर्स्ट आवर ऑफ योर रिलैक्स शो। सो अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, 5:05, बाहर अभी अंधेरा है, हमारे टापू

0: में धीरे धीरे लोग जग रहे हैं। कुछ लोगों की आंखें अभी तो बंद हैं, कुछ लोग अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ सैटरडे को वेलकम कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए तो सैटरडे भी एक नॉर्मल वर्किंग डे है। लेकिन चाहे आपकी मॉर्निंग बिजी हो या बिल्कुल रिलैक्स्ड, एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि वीकेंड का मूड सुबह से ही सेट होता है। तो आज टेंशन को थोड़ा साइड में रखिए, जो काम कल करना था वो कल ही रहने दीजिए, और आज की सुबह को थोड़ा फील कीजिए, म्यूजिक को एंजॉय कीजिए और अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए। रेडियो मस्ती के साथ बने रहे, और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294, एंड लेट मी टेल यू दैट आपको ये आवर बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्यार और जादू ही छाने वाला है। द नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है, हैव अ वंडरफुल सैटरडे मॉर्निंग।
1: With Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: कहते हैं कि सैटरडे की सुबह का अपना ही चार्म होता है। मंडे से फ्राइडे तक हमारी लाइफ एक रेस होती है, अलार्म रेडी होना, ट्रैफिक कैम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर सडनली सैटरडे आता है और दिल कहता है कि आज थोड़ा धीरे चलो। और ऑनेस्टली कभी कभी धीरे चलना भी जरूरी होता है। सुबह उठकर फोन चेक करने से पहले एक बार खिड़की से बाहर देखिए, मौसम को फील कीजिए, एक कप चाय बनाइए और अपना फेवरेट गाना लगाइए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कौन सा गाना हम सुने, तो लेट मी टेल यू दैट आप ट्यून इन कर सकते हैं जो रेडियो मस्ती, क्योंकि चिलैक्स में हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने बस आपका दिन बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर ये गाने आप एंजॉय करते रहिए और लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ी हैप्पीनेस दे जाएगी, क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा किसी बड़े इवेंट का नाम तो नहीं होता। कभी एक गर्म चाय का कप हैप्पीनेस है, कभी फेवरेट गाना हैप्पीनेस है, कभी किसी अपने का गुड मॉर्निंग हैप्पीनेस है, और कभी कभी बस बिना किसी वजह से अच्छा फील करना भी हैप्पीनेस है। तो अगर आप अभी बेड पर हैं, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए, और अगर आप काम पर जा रहे हैं तो म्यूज़िक को अपना साथी बनाइए, और अगर आप ऑलरेडी वीकेंड मूड में आ चुके हैं तो वाजी वाह, सैटरडे ऑफिशियली सक्सेसफुल। रेडियो मस्ती पर रिलैक्स जारी है और म्यूजिक भी बिल्कुल आपके वीकेंड मूड जैसा है, बहुत ही नायाब। सो यस, लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट गाना। बहुत ही खूबसूरत गाना है नेक्स्ट जो हम चलाएंगे आपके नाम, और थोड़ी देर में हम आपके मैसेजेस के साथ वापस लौट आएंगे।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: जैसा कि हमने कहा था कि आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस वी हैव, तो हमारे साथ है जुड़ चुके हैं देवानंद जी। हेलो, नमस्ते आपको। एंड आप डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना, किशोरदा का एक गाना, आप इसे डेडिकेट करते हैं जो बबीता, दर्शनी, क्रिश्चियन, नकुल एंड रिया, एंड कहते हैं दैट आई एम टाइमली एज यूजुअल। ये तो सच बात है कि आप वीकेंड पर हमेशा जुड़ जाते हैं एग्जैक्टली 5 AM, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। आई विश यू अ वंडरफुल सैटरडे मॉर्निंग, आपका ये शनिवार बहुत ही अच्छा जाए। एंड जयशन जी प्रणाम, कैसे हैं आप? अभी काम कर रहे हैं या घर पर हैं? आई थिंक आप काम पर हैं, सो आप अपने कलीग्स के नाम गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। तेम्बा उमरन, दानू, जीबन, अंगुठिया, आकाश, शर्वन, रामदेवर, मेविन एंड आपके नाम ही हम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करते हैं। सारा बानू जी और अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को, एंड सभी को विश करते हैं टू हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल सैटरडे आप भी। एंड ऑल्सो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ शीला जुड़ चुकी है, अब है लिस्पेरेंस ट्रेबुशे से और अपने परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करती है। एंड संध्या जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? लॉन्ग माउंटेन से हैं और अभी नाइट शिफ्ट काम कर रही है अपनी दोस्तों के साथ, मालिनी, राल्डिन, पास्कालिन, और उनके नाम एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप डेडिकेट करना चाहती है। एंड विदाउट फॉरगेटिंग अदर्स वर्किंग चिल्ड्रन फाउंडेशन, ओके, तो हम ज़रूर, और आपके बेटे अक्षय के नाम भी डेडिकेट करेंगे। सो सभी के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है। हैप्पी बर्थडे विश हम करते हैं टू छोटी बहन पूनम सुनक सिंह, और बेस्ट विशेष

0: coming from Sungai Pemisahan. पामिसाओ देसन सुनक्सिंग उहादन सिबालक का परिवार जो है रुसल से और हमारी ओर से भी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे
1: Chillax with Radio Masti
2: your number one Bollywood radio station

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: घर मिलाते चलिए 5:46 और अभी समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा इस योर राशि टाइम। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन नए काम शुरू करने के लिए अच्छा है। परिवार का साथ मिलेगा और किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपने फैसलों पर भरोसा रखें और बिना सोचे खर्च करने से बचें। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। किसी अपने से बात करके मन हल्का होगा। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखें। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपके काम की तारीफ हो सकती है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप अच्छी तरह निभाएंगे। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज सेहत और आराम दोनों का ध्यान न रखें। जरूरी काम पहले पूरे करें और बाकी बातों की चिंता न करें। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बात हो सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। ओवरऑल आपका दिन अच्छा ही जाएगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की उम्मीद है। आज परिवार वालों के साथ अच्छा समय बीतेगा। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आपका दिन आज उत्साह से भरा रहेगा। घूमने फिरने या परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है और किसी दोस्त से भी अचानक भेंट हो सकती है। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज किसी जरूरी फैसले में सोच विचार करके आगे बढ़े। काम में प्रगति के संकेत है, शायद जल्द ही प्रमोशन मिल जाए। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज कोई अच्छी खबर आपका दिन बना सकती है। दोस्तों और अपनों के साथ समय अच्छा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज मन शांत रहेगा और किसी नए काम की शुरुआत का विचार आ सकता है। अपनी सोच पर भरोसा रखें, आप आगे तक जरूर पहुंचेंगे। लकी नंबर है आज आपका 7। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घर में लाते चलिए सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ है. संध्या नमस्कार आपको करुणा जी.
6: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार. आज सुबह से बंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा, फिनिंग. इस नई पहचान का अनावरण कल लावाचे जिससे खुब बोपलों में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया. बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने विशेष रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया. उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है. मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया है.

0: इसे हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। कल भारतीय पक्ष के साथ हस्ताक्षर किए गए एक एमओयू के बाद ऊर्जा मंत्री ने इसकी जानकारी दी। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद सेंट्रल वाटर अथॉरिटी लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिव्ये रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। हमले में 130 लोग घायल रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में अभी भी और लोगों के फंसे होने की खबर है। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में कुछ घड़ी के लिए बादल घेराएंगे और पूर्व उत्तर तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घेराएंगे और जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा तटवर्ती इलाकों में, बल्कि सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त होगा 5:59 पर। पूरा बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Chillax, chillax, chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty. छह बजकर 9 मिनट वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात सैटरडे मॉर्निंग और रिलैक्स का सेकंड आवर शुरू हो चुका है। पहले आवर में हमने वीकेंड को वेलकम किया और अब म्यूजिक में थोड़ा सा बदलाव। अब बजेंगे मिक्स गाने लेकिन मूड रहेगा सॉफ्ट रोमांटिक और दिल के करीब। और शुरुआत हुई है एकदम परफेक्ट वीकेंड ट्रैक के साथ, ऐसा दीवाना फ्रॉम द मूवी दिल मांगे मोर। कुछ गाने बस गाने नहीं होते, उनके साथ एक फीलिंग जुड़ी होती है। कभी किसी की याद आ जाती है, कभी कोई पुरानी मुलाकात याद आ जाती है और कभी बस बिना किसी वजह से दिल हल्का सा खुश हो जाता है। सैटरडे की सुबह है तो आज थोड़ा दिल की सुनिए। अगर कोई खास इंसान याद आ रहा है तो याद आने दीजिए, अगर किसी के साथ समय बिताने का मन है तो उनको एक सिंपल मैसेज भी आप भेज सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल सैटरडे, यही आप कह सकते हैं, बहुत तो होगा। क्या पता आपका एक छोटा सा मैसेज किसी का पूरा दिन बना दे। तो रेडियो मस्ती की आवाज के साथ बनाए रखिए और रिलैक्स में अभी भी हम लेकर आए हैं खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक्स, तो आप जुड़े रहिए एंड ऐसे ही हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499194। दिस इज मी, आपकी अपनी ही रिया, आपके साथ इन योर रिलैक्स शो।
1: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

6:30 हैं, पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज सुबह से भंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा, फिलिंग। इस नई पहचान का अनावरण कल बुपलों में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप के सीईओ ने स्थानीय कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मॉरिशस ने अपनी

0: कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया। इसे हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। भारतीय पक्ष के साथ हस्ताक्षर किए गए एमओयू के बाद ऊर्जा मंत्री ने इसकी जानकारी दी। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद CWA लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए। अब प्रत्येक आयोजक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 के बढ़ाकर 100 कर दी गई है। कैबिनेट में इसका जायजा। नए नियम आज 22 अगस्त से लागू। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिव्ये रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस कोयले की जगह बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाएगा। आज सुबह से भंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा, फिलिन। इस नई पहचान का अनावरण कल बुपलो में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप के CEO ने कहा कि मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर उन्होंने जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। भंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश को भी जारी रखे हुए हैं। फिलहाल 5 नए भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 बिलियन रुपए का निवेश किया जा रहा है। सुनते हैं उनके बयान का एक अंश।
1: इकोनॉमिक सोवरेनिटी इज ए नेशनल प्रायोरिटी। दिस एक्विजिशन रिप्रेजेंट्स फार मोर देन जस्ट अ कमर्शियल अचीवमेंट। इट शोज दैट मॉरिशियन कंपनीज आर कैपेबल ऑफ कंपीटिंग, इन्वेस्टिंग एंड सक्सीडिंग इन वाइटल सेक्टर। सिंस जून 2024 आवर टीम हैव वर्कड relentlessly to make this project a reality. Today, Beta Oil Terminal Limited is the owner of Engen's Mauritius Fuel Distribution Network, as well as its aviation, maritime, lubricant, commercial, and storage operations. For us, Mauritius is not only a market. Maurice, c'est nous pays, c'est nous la case. We are currently constructing 5 storage tanks for the sum of 1 billion rupees. 1 milliard rupees, which will increase the national strategic oil reserve by more than a week. It's no mean feat. By strengthening our country's strategic oil reserve, we are enhancing our resilience to external shocks and disruption in the global energy market. This is what investing in Mauritius means to us. It means building the infrastructure that creates greater resilience and prepare us for the challenges of tomorrow.
0: गौरतलब है कि भंजन ग्रुप ईंधन वितरण करने वाला प्रथम 100% मॉरिशियन समूह है। समूह ने नवंबर 2025 में अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के जरिए इंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण कर ईंधन वितरण क्षेत्र में प्रवेश किया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत के साथ वर्षों से विकसित किए गए सहयोग और साझेदारियों का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, इसलिए मॉरिशस को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: During my state visit to India, I once again raised this important issue of energy security with Prime Minister Shri Narendra Modi. Again in February 2026, during the AI Impact Summit held in New Delhi, I pursued discussions with Prime Minister Modi again on the strategic imperative of ensuring a reliable and cost-effective supply of petroleum to Mauritius. At that time, there was no war with Iran. Just well before the war broke out. That is why I say we need to be foresighted

0: in our decision. We must think ahead of the curve. Yesterday we witnessed a milestone event with the signature of two important instruments with India. First, an MOU on cooperation in the oil and gas sector. And second, the State Trading Corporation and Indian Oil have signed a sales and purchase agreement for the long-term supply of white oil products to Mauritius. These include petrol, diesel, aviation fuel and marine gas oil.
1: और तलब है कि मॉरिशस को ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के बायोफ्यूल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार से मॉरिशस की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और हरदीप सिंह पुरी के बीच एक MOU का आदान प्रदान भी हुआ। इसके तहत इंडियन ऑयल लिमिटेड के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए मॉरिशस को ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। मॉरिशस कोयले की जगह बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाएगा। मॉरिशस ने अपने कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता और सहायता लेगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री पार्थ कश्यप बादल ने कल पोर्टवी में भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद दी। ये समझौता खासतौर पर जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सहयोग पर आधारित हैं। मंत्री पात्रिक आसिया वादन को सुनते हैं, विवरण आस्था गोबिन का है।
2: Et moi, je profite l'occasion d'aller là dans une bilatérale, dans une réunion bilatérale, pour soulever 3 issues avec les issues Tamarind Fall, qui nous permettent de vivre le plus vite possible.
3: भारतीय मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मैंने Tamarind Falls का मुद्दा उठाया। हम चाहते हैं कि जनवरी 2027 में पैनल्स बिठाए जाने की परियोजना शुरू हो जाए। मैंने बंदरगाह में NLG पर चलाए जा रहे अध्ययन पर भी बात की।
2: 100 मेगावाट, je peux l'NP de nous, ça l'expertise là, nous peut faire aller, nous peut demander très fait, il peut dire moi lui, octobre novembre.
3: भारतीय विशेषज्ञता इसमें हमें प्राप्त हो रही है। अक्टूबर से नवंबर तक ये अध्ययन शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, 1,00,000 फोटोवोल्टाइक पैनल्स की मांग हमने दोहराई जो घरों पर बिठाए जाएंगे। कई स्कीम हैं और भारत में गुजरात में भी इसी तरह की स्कीम चलाई जा रही है। जल्द ही हमें पैनल्स हासिल हो जाएंगे ताकि ये सेक्टर जल्द ही गति पकड़ सके। मैं भारतीय मंत्री की यात्रा से बेहद संतुष्ट हूँ। हम भारतीय मदद के लिए आभारी हैं। हमारी बैठक नई दिल्ली में लगेगी।
2: Donc, moi, extrêmement content de la visite du ministre et moi, je remercie lui pour ce qu'il peut faire pour nous et nous donne rendez-vous, nous pour joindre prochainement à New Delhi pour discuter certaines choses.
1: प्रत्येक आयोजक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। कैबिनेट में इसका जायजा लिया गया। नए नियम आज 22 अगस्त 2026 से लागू होंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC ने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसमें मॉरिशस में डिस्ट्रीब्यूटेक्स नामक संस्था द्वारा की जा रही क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों के प्रति लोगों को आगाह किया गया है। FSC के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेक्स वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मौजूदगी बनाए हुए हैं और मॉरिशस में कई स्थानों से भी अपनी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। FSC ने इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी है ताकि जांच की जा सके। आशंका है कि डिस्ट्रीब्यूटेक्स पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम संचालित कर सकती है। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद CWA लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों सहित पानी के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उपलब्ध जल संसाधनों को मजबूत करने और मौजूदा स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने के लिए नई परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जल्द ही नई घोषणाएं

0: किए जाने की उम्मीद है। CWA के संचार अधिकारी सुनील गोपाल से बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने, विवरण आस्था गोबिंद का।
1: J'ai constaté qu'il y en a deux réservoirs principaux, c'est-à-dire Marouvarquois et la Nicolière, qui en a deux de remplissage qui est assez inquiétant. Malheureusement, même si nous gagnons un peu la pluie à travers le pays, la Nicolière, il y en a un.
2: दो मुख्य जलाशय यानी मऊवाकुआ और लानिकुलिया के जलस्तर बहुत कम है और स्थिति चिंताजनक रही है। बारिश हुई है हाल में और लानिकुलिया के पानी का जलस्तर कुछ हद तक बढ़ा है, लेकिन मऊवाकुआ में अभी भी केवल 40% ही पानी है। अगर पानी की कटौती का कदम नहीं उठाया जाता तो ये दर और भी कम होती। हम नदी के पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, पानी को साफ किया जाता है और उसे प्रणाली में सप्लाई किया जाता है। इस दिशा में और आगे बढ़ने का इरादा है, हम अधिक प्रेशर फिल्टरों का इस्तेमाल करेंगे।
0: दस अगस्त से पानी की बचत के लिए कावाश पर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस बीच कई कावाश अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। आखिर इन प्रतिबंधों के बीच वे अपना काम कैसे चला रहे हैं? सदानंद, जो कई कावाश के मालिक हैं, ने इसके लिए एक तरीका अपनाया है। उनको सुनते हैं, उनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने, विवरण आस्था गोबिंद का।
3: Ici, mon fait commencer, il y a deux mois, et mon fait investir. Et mon trouve dans une situation qui, à cause de nous prendre un travailleur, mon fait besoin d'acheter de l'eau.
2: यहाँ हम दो महीने से काम कर रहे हैं, इस कारोबार में निवेश किया है। अब स्थिति मुश्किल हो रही है। दो हफ्ते से जब से पानी पर पाबंदी शुरू हुई है, हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। 10,000 रुपए लग गए हैं। हमारे पास एक रिसाइकलिंग सिस्टम भी है, हम पानी का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाए। नवंबर महीने तक ये कदम जारी रहेगा, स्थिति और भी मुश्किल और चिंताजनक हो जाएगी हमारे लिए।
3: Qui tout molle, les récupérer et nous nous investir dans un système recyclant, nous recycler de l'eau là avec des lits ongoing.
0: कावाश पर पाबंदियां लागू होने के बाद कई कर्मचारियों को शुरुआत में अपनी नौकरियां जाने का डर था। हालांकि कुछ कावाश ने वैकल्पिक उपाय खोज लिए, खरीदा हुआ पानी इस्तेमाल करने के साथ साथ पानी को जमा करने और रिसाइकल करने वाली प्रणालियों की मदद से ये कावाश अपना काम जारी रख पा रहे हैं। इससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी काफी हद तक राहत मिली है। एबेन स्थित एक कावाश के कर्मचारी जेहाल लाभघोष से निर्मा नारायण रेड्डी ने बात की, उनको सुनते हैं।
4: On est pas peur parce que on pas connaît qu'avoir revenu pas quand même tenu de haut à cause de la dure.
2: हमारी नौकरी को लेकर बहुत अनिश्चितता है, हमारी नौकरी खतरे में है, पानी की समस्या है, यही हमारी रोजी रोटी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि समाधान ढूंढ लिया जाएगा, हमें कुछ राहत मिली है।
0: मॉरिशस सरकार खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस योजना में स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल नई किस्मों का विकास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। फेरिना, जिसे नुआ 45 के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी ही एक नई बीन की किस्म है। इसे इसकी अच्छी उपज और अधिक आयरन मात्रा के लिए चुना गया है। सरकार ने इस किस्म के बीज पर 75% सब्सिडी देने की व्यवस्था की है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपये प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध है। विस्तार कुणाल गोजी की इस रिपोर्ट में। बासे में उमेश भोला 30 पर्च जमीन पर बीन्स की खेती करते हैं। अब वे पुरानी किस्म रेड पर्ल को छोड़कर पूरी तरह फेगिना की खेती करने का इरादा रखते हैं। फेरिना के बीजों पर 75% सब्सिडी दी जा

पॉलिसीज हैं और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा इसे 130 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। किसानों के अनुसार इसका उत्पादन लाभदायक है। बाजार में फिगिना लगभग 150 रुपये आधा किलो बेचा जा रहा है।

0: के अनुकूल नई बीन्स की किस्मों पर प्रयोग और विकास कर रहा है। ये किस्में कोलंबिया से प्राप्त हुई हैं और ट्रॉपिकल कृषि केंद्र के मार्गदर्शन में इन पर काम किया जा रहा है।
1: Nous arrive à 5 variétés prometteuses et ça va une variété là nous peut évaluer ici que le planteur. On a trouvé que même s'il n'est pas gagné trop beaucoup la pluie, il n'est pas gagné trop beaucoup fertilisant, mais still il est capable de survivre. Il n'y a pas besoin de dépendre de nos importations de bonnes semences des hauts parce que le prix des semences il peut rester monté, il peut aller même.
0: Beans की खेती में अनुसंधान और विकास का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के आयात पर होने वाले लगभग 35 बिलियन रुपए के वार्षिक खर्च को कम करना है। टिकाऊ जमीन प्रबंधन के लिए चीनी विशेषज्ञता की भी मदद ली जा रही है। इस वर्ष AMB 600 किलो बीज बेचने का इरादा रखता है। एक बीघा जमीन के लिए लगभग 100 किलो बीज की आवश्यकता होगी और इससे करीब 3 टन उत्पादन प्राप्त होने का अनुमान है। विदेशी स्तर पर यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिव्ये रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। हमले में 130 लोग घायल भी हुए, जिनमें 23 बच्चे शामिल हैं। मलबे में अभी भी और लोगों के फंसे होने की आशंका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को बिल्कुल निंदनीय और घृणित बताया। उनके अनुसार दिन में हुए इस हमले को 2 चरणों में अंजाम दिया गया। दूसरे हमले में घटना स्थल पर मौजूद आपातकालीन और बचाव कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और पूर्व उत्तर तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम में सुधार आएगा, मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर कुछ घड़ी के लिए बादल घिराएंगे और जहां तहां कुछ बारिश होने की संभावना है। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। ऊंचाइयों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज सूर्योदय हुआ 6:27 पर, सूर्यास्त होगा 5:59 पर।

आज सुबह से भंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा। फिल इन इस नई पहचान का अनावरण कल बोपलो में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप के सीईओ ने स्थानीय कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर। मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया। इसे हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। भारतीय पक्ष के साथ हस्ताक्षर किए गए एक एमओयू के बाद ऊर्जा मंत्री ने दी इसकी जानकारी। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद CWA लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रयास जारी। अब प्रत्येक आयोजक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। कैबिनेट में इसका जायजा।

0: और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिव्ये रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत। 6:51 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कादर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: Moral Road, Bobasse में 87 साल की 87 year old श्री सिडनी एयरबेयर सिकोटन जो सिडनी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी जो है आज दिन के 2:30 एलियंसन्स खुद ख्याल बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। क्रिमेशन रोड रिश्मा में 81 साल की 81 ईयर ओल्ड श्रीमती द्रौपदी बुझियावन पैदाइश नाम टैंगो जो राधा से जानी जाती थी और पंडित श्रद्धानंद बुझियावन की पत्नी थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3:00 इनके मकान क्रिमेशन रोड रिश्मा से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्रिमेशन रोड रिश्माओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:00 PM। नंबर 4 करिकाल स्ट्रीट पोर्टवे में 83 साल की 83 ईयर ओल्ड श्रीमती जय बुनेसा गोलामाली बल्कि बेगम जय बुनेसा गोलामाली पैदाइशी नाम मूली इंतकाल कर गई हैं। जनाजा जो हैं आज दिन के 12:30 इनके शौहर उस्मान गुलाम अली के मकान नंबर 4 करिकल स्ट्रीट पोर्टवी से निकाल कर पहली अल अक्सा मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 9:30 PM। गुशकुटलेन प्लान डे पापाई में 86 साल की 86 ईयर ओल्ड श्री मोहित खेडन जो मोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2:00 के बेटे किशन खेडन के मकान गुशकुटलेन प्लान डे पापाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लान डे पापाई की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:00 PM। ला शपेल आउडोट पॉइंट ऑफ साबल में 75 साल की 75 ईयर ओल्ड श्री केशवराव पडू जो कृष्णा गौसोताये से जाने जाते थे और पहले नंबर 20 एवेन्यू विल्सन रोस बेल रोज रहते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4:00 एलियंसन्स ला शपेल आउडोट पॉइंट ऑफ साबल से उठाकर दाह संस्कार के लिए कॉन्वे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:00 PM। होटल नंबर 1 एवेन्यू पाल्मा काटोबोन में 76 साल की 76 ईयर ओल्ड श्रीमती रेवती गनावरी पैदाइशी नाम नुजादिक जो आंटी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 इनकी बेटी विदाउटी पमचन के मकान होते नंबर 1 एवेन्यू पाल्मा काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। मुस्के गली शमेगनिये में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड श्रीमती सुभद्रा भवन पैदाइश नाम हीरा जो सांता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:00 इनके मकान मुस्के गली शमेघनिये से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्रणमायों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:00। बैठका गली यूनियन पार्क में 88 साल की 88 ईयर ओल्ड श्री मोहर लाल सिंह राम केलावन जो महेश से जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:00 इनके बेटे कैलाश राम केलावन

उनके मकान बैठ का गली यूनियन पार्क से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारे जाने रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रोट रॉयल फों दु साक में 73 साल के 73-year-old श्री लक्ष्मी प्रसाद हीरा, श्री लक्ष्मी प्रसाद हीरा जो अंगली से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे अमित हीरा के मकान रोट रॉयल फोंजिसाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए फोंजिसाक की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 185 रोट दे पॉम्पलेमूस ला क्वाजे वाले दे प्रेत पोटवी में 60 साल की 60-year-old श्री दुर्गा लक्ष्मण, श्री दुर्गा लक्ष्मण जो पाको से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई विक्रम लक्ष्मण के मकान नंबर 185 रोट दे पॉम्पलेमूस ला क्वाजे वाले दे प्रेत पोटवी से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दे प्रेत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। डालिया लेन बेलव्यू मोरेल में 66 साल की 66-year-old श्री सत्यदेव सिदोनी, श्री सत्यदेव सिदोनी जो सत्यदेव मासों से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री रवि अखिलेश सिदोनी के मकान डालिया लेन बेलव्यू मोरेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए लामोगी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोंफ्लेरी सियाकोंस्टांस सेंट पियर में 82 साल की 82-year-old श्रीमती नीलामा नीलादू, श्रीमती नीलामा नीलादू पैदाइशी नाम ढलापा जो सेलिया से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। क्षमा करें, अर्थी जो हैं आज दिन के 10 बजे इनके बेटे नीलादू कृष्णा के मकान वक्स हॉल लेन मोंफ्लेरी सियाकोंस्टांस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। बाल्मीकि रोड बुआमोंग प्लान दे पपाय में 30 साल के 30-year-old श्री चंद्रशेखर रंगलोल, श्री चंद्रशेखर रंगलोल जो किलान से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9 बजे इनके पिता श्री देवानंद रंगलोल के मकान बाल्मीकि गली बुआमोंग प्लान दे पपाय से उठाकर दाह संस्कार के लिए पितों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। नंबर 224 ए बेनोडे सेंट पियर वाली दी प्रेत में 60 साल के 60-year-old श्री चंद्रनाथ बुलका, श्री चंद्रनाथ बुलका जो राजेश से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 224 ए बेनोडे सेंट पियर वाली दी प्रेत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भूले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रोट रॉयल अमोरी में 21 साल की 21-year-old श्री निमालेन मुनिसोमी, श्री निमालेन मुनिसोमी जो नेलविन से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके पिता विशालन मुनिसोमी के मकान रोट रॉयल अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। चंबितलेन मैडम लुलू रोजवेल में 49 साल की 49-year-old श्रीमती केसुंती श्याम, श्रीमती केसुंती श्याम पैदाइशी नाम कुंती राम जो आरती से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके पति श्री संजय श्याम के मकान चंबित लेन मैडम लुलो रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई।

0: जाएगी क्रिमेशन टू डेथ ऑफ बॉस 2 PM। मोफेचिल न्यूग्रोव में 77 साल की 77-year-old श्री त्रिभुवन टैगोर, श्री त्रिभुवन टैगोर जो सुकराज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है, अर्थी आज दिन के 11 बजे। इनकी पत्नी श्रीमती लीलावती किरण टैगोर के मकान मोफेचिल न्यूग्रोव से उठाकर दाह संस्कार के लिए मॉर आल्बेया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे हुए सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti
1: North, South
2: 103.5
1: East, West
2: 96.4
1: Center
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। घर में लाते चलिए सुबह के ठीक 7:03।
4: Chillax with Radio Musti,
1: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty. सात बजकर आठ मिनट हो चुका है. गुड गुड मॉर्निंग सभी को. और सैटरडे मॉर्निंग अब थोड़ी रोशन, थोड़ी एक्टिव और बिल्कुल वीकेंड वाली फीलिंग में आ गई है. रेडियो मस्ती पर चिलैक्स का थर्ड आवर शुरू हो रहा है और अब मूड में आ गया है थोड़ा सा चेंज. रोमांटिक गाने अपनी जगह, लेकिन अब समय है कुछ कूल फ्रेश और फील गुड गाने का. सैटरडे है भाई, आज अलार्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूड. कुछ लोग अभी भी बेड पर है, कुछ चाय लेकर बालकनी में बैठे हैं, कुछ अपना सैटरडे प्लान बना रहे हैं और कुछ लोग ऑलरेडी घर के काम में लग गए हैं. वैसे नॉट टू फॉरगेट कि कई लोग काम पर भी जा रहे हैं, उनके लिए सैटरडे इज लाइक अ नॉर्मल वर्किंग डे. तो जो भी आप कर रहे हैं, जस्ट हैव अ गुड टाइम. और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, वो कॉज टू यू. एंड आई होप कि आप म्यूज़िक को अपना साथी बनाएंगे. आज का रूल बहुत ही सिंपल है, कम टेंशन ज़्यादा म्यूजिक, कम सोचना ज़्यादा जीना. तो वॉल्यूम थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, चाय का एक सिप लीजिए और सैटरडे मॉर्निंग को आप एंजॉय कीजिए. रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं चिलैक्स रिया के साथ और अब शुरू होता है एक बहुत ही खूबसूरत गाना. जी हाँ, हम ऐसे ही गाने लेकर आए हैं आपके नाम. बीच बीच में एक दो पब्लिसिटीज भी हम चलाएंगे, लेकिन नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस की ओर भी हम ज़रूर पढ़ेंगे. सो आप ज़रूर भेज सकते हैं आपके डेडिकेशन मैसेजेस 5499 1294.
1: Chillax with Radio Musty, your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: सैटरडे का दिन है और सोचा कि आपको ऐसे कैसे छोड़ दे. चलिए हम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं आपके नाम. एंड यस, वी हैव अ गेम फॉर यू. तो बस आपको प्ले करना है एमबीसी के साथ और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है 2 एंट्री टिकट्स टू असिस्ट कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबानी एट कुदा आर्ट्स सेंटर, 90-minute डांस थिएटर प्रोडक्शन सेलिब्रेटिंग द जर्नी ऑफ कथक फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स एज अ क्लासिकल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन टू इट्स आइकॉनिक प्रेजेंस in Bollywood and Indian cinema. A vibrant mix of dance, music, cinema and storytelling, bringing together classical tradition and Bollywood nostalgia. Curated and directed by Vidushi Arpita Banerjee. So, yahan par hum Bollywood question hi lekar aaye hai aapke naam. And as you know, very trendy film, jo ki aajkal, जी हाँ, सब कोई इसके बारे में बात कर रहा है. We have the movie Awarapan 2. तो आप हमें बताएं कि आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ फीमेल लीड कौन है. आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ फीमेल लीड कौन है, बस यही आपको हमें बताना है. सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ ऑन 5499-1294. चलिए, गुड लक टू ऑल ऑफ यू.
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: रेडियो मस्ती पर आई होप आप रिलैक्स ही कर रही है। वैसे यहाँ पर हमने एक गेम खेला था आपके साथ और हमने पूछा था कि फिल्म आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ फीमेल लीड कौन है और सही जवाब है दिशा पतानी। जी हाँ, सही जवाब बहुतों ने दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एज यू नो एक ही विनर चाहिए और हमारी लकी विनर है विदुषा कुसा सिंह। आप है सेबास्टोपोल से, सो कंग्रेचुलेशंस आपको। आपने खेला है एमबीसी के साथ और आपको मिल रहा है 2 entry tickets टू असिस्ट कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबानी एट कुडो आर्ट्स सेंटर, 90-minute डांस थिएटर प्रोडक्शन सेलिब्रेट The journey of Kathak from its origins as a classical storytelling tradition to its iconic presence in Bollywood and Indian cinema. A vibrant mix of dance, music, cinema and storytelling, bringing together classical tradition and Bollywood nostalgia, curated and directed by Vidushi Arpita Banerjee. So, my dear Vidusha, आपको ये 2 entry tickets मिल रहा है और ये आप तक कैसे पहुंचेगा ये हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस आपको। जो लोग नहीं जीत पाए दिल छोटा ना करें, क्योंकि बारी आपकी जरूर आएगी और शायद आज ही आ जाए।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: राइट घर मिलाते चलिए एग्जैक्टली 7:30 बज रहे हैं और आज यूजुअल स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी, तो चलिए उनसे सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको विकास जी।
4: गुड मॉर्निंग, नमस्कार रिया ने, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। मॉरिशस की जय हो, किमलेकू देपिना विजयी हो, हौसला रखो, आगे बढ़ो, हर चुनौती से लड़ो और बढ़ो। मॉरिशियन साइकिलिंग फिर से विश्व स्तर पर, इस बार टू डी फ्रांस से निकलकर टू ऑफ ब्रिटेन में कल शाम किमलेकू ने तीसरा चरण जीतकर मन गदगद कर दिया, दिल खुश कर दिया, अखा मॉरिशस को फिर मिला दिया।
5: A couple of hundred meters to go then for Kim LeCour, and she is pushing as hard as she possibly can in and out the saddle. We believe there's only around 100 meters to go here as she is coming up to the line to take the stage.

0: victory. What a finish for Kim LaCour. She has given absolutely everything that she has got on this climb. She knows that every single second counts. And this has been an exceptional performance from the Mauritian champion. Kim LaCour, take a bow. You are the stage winner of stage three of the Lloyds Tour of Britain Women. She started the day.
1: What a finish for the Mauritian champion. Kim ne 104.4 किलोमीटर का ये रास्ता 2 घंटे 46 मिनट और 10 सेकंड में अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी जर्मन साइक्लिस्ट लियान लाइपर्ट से 13 सेकंड आगे पूरा किया और इस प्रकार हमारा मॉरिशन चैंपियन साथ ही इस टू ऑफ ब्रिटेन का ग्रीन जर्सी पहनकर लीडर भी बन गई है, एक ऐसी लीडर जो नीडर है, दुनिया की बेस्ट स्प्रिंटर और इस प्रतियोगिता के प्रथम दो स्टेज जीतने वाली नेदरलैंड्स की लोरेना वाइब्स फिलहाल किम लेकू से 35 सेकंड पीछे है। अब आज पूर्वांतिम या पेनल्टीमेट चौथा चरण पहाड़ी इलाके से होकर 138.3 किलोमीटर की रेस होगी, जिसे जीतने के लिए दुनिया की बेहतरीन महिला साइक्लिस्ट जी जान लगा देंगी। इसलिए कम ऑन किम, कम ऑन मॉरिशस। ब्रिटेन में ही रहते हैं लेकिन इस बार इंग्लिश फुटबॉल की बात करें। लगभग 3 महीनों की छुट्टी के बाद द एफए इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 कल रात बड़े ही धमाकेदार तरीके से आरंभ हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल ने अपना टाइटल खूब डिफेंड किया। उम्मीद के मुताबिक चैंपियन टीम आर्सेनल ने अपना क्लास दिखाया और कोवेंट्री सिटी को आसमान से जमीन पे लाया। आर्सेनल 3 कोवेंट्री सिटी 0, एक कंफर्टेबल जीत कह सकते हैं। काई हावर्ट्स, बुकायो साका और मार्टिन ओडेगार्ड टारगेट फॉर द गनर्स। और इस मैच में कई खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला तो कई की खिलाड़ी बेंच पर ही बैठे रहे, यानी कि आर्सेनल के स्क्वाड एकदम हरा भरा है। सो इसमें ब्रूनो गुमारेज और विक्टर ग्योकरेज भी नहीं खेल पाए और कई खिलाड़ी अभी भी आने के लिए तैयार हैं। सो आर्सेनल ने एक और खिलाड़ी को अभी साइन किया, इस पर बात करेंगे। कोवेंट्री सिटी को चाहिए और हार्ड वर्क। आउटप्लेड एंड आउटक्लास्ड, कोच फ्रैंक लैम्पर्ट को दोहरी या तिगुनी मेहनत करनी होगी क्योंकि प्रीमियर लीग टफ है, जहाँ जो जीता वही सिकंदर। योग्य टीम ही जिंदा रह सकती है, इसीलिए कहते हैं कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग में। और प्रीमियर लीग जिंदाबाद, मन प्रसन्न, हर टीम का हौसला बुलंद। अब आज का अर्ली किक ऑफ शाम 3:30 बजे 3:30 PM से ही आज का पहला मैच आरंभ होगा, हल सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। 3:30 PM द रेड डेविल्स अपना ये सीजन हल सिटी का सामना करते हुए शुरू कर रहे हैं। वे अभी भी अपने पहले मैच में एक न्यूली प्रमोटेड टीम के खिलाफ नहीं हारे हैं। वैसे भी दिल वाले कभी हारते नहीं, नए खिलाड़ी भी आए हैं, योगी चेलमांस और सांतोस आदि तो आ गए हैं मिडफील्ड को पूरा करने के लिए। एक और खिलाड़ी अभी कल ही आया। सो आज का पहला मैच 3:30 बजे हल सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर शाम 6 बजे एवर्टन क्रिस्टल पैलेस, इप्स्विच टाउन का मुकाबला सन्डरलैंड से, नॉटिंगम फॉरेस्ट वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, और आज का आखिरी मुकाबला रात 8:30 बजे ब्रैंटफोर्ड वर्सेस टोटेनम हॉटस्पर। कल रविवार की शाम 5 बजे ब्राइटन का मुकाबला एस्टन विला से, मैनचेस्टर सिटी खेलेगी बोर्नमुथ के विरुद्ध। नए कोच एंजो मारिस्का पर दबाव है, उन्हें जांचा जाएगा, तोड़ा जाएगा, मड़ोरा जाएगा और कंपेयर किया जाएगा, फिर भी हौसला बुलंद है। मैन सिटी वर्सेस बोर्नमुथ कल शाम 5 बजे, और कल रात 7:30 बजे 7:30 PM न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। नए कोच एंडोनी इराउला के लाल सिपाही अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। पिछली 9 मुलाकातों में लिवरपूल सेंट जेम्स पार्क में कभी नहीं हारा है। और इस बीच ब्रैडली बाकोला के इंतजार में विंगर यांकुबा मिंटे के लिए ब्राइटन ने लिवरपूल का एक दूसरा इम्प्रूव्ड प्रस्ताव, इस बार 60 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे पहले 50 मिलियन दिए जा रहे थे, किंतु बातचीत जारी है। पेरिस सेंट जर्मेन का

0: इब्राहिम एम्बाई भी लिवरपूल के रडार में है, किंतु ब्रैडली बाकुला रिमेन्स द मेन टारगेट। जरेमी जाके, विक्टर मुनोज और रोनाल्ड अरोहो आ गए हैं, तो मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन, इब्राहिम अकुनाते और कर्टिस जोन कल ही गया। इनके साथ एक युग बीत गया और एक नया युग आरंभ होने जा रहा है। सो ट्रांसफर की बात हुई तो ब्राइटन का 22 वर्षीय 22 ईयर ओल्ड मिडफील्डर कार्लोस बालेबा मैनचेस्टर यूनाइटेड का हो गया। कल ही 70 मिलियन पाउंड में ये सौदा तय हो पाया दोनों टीमों के बीच, यानी द रेड डेविल्स का मिडफील्ड अब पूरा हुआ योरी चेलमांस तथा सांतोस को हासिल करने के बाद। आर्सेनल ने इस बीच एस्टन विला के डिफेंडर एजरी कोंजा को 55 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया है। द गनर्स की भूख जारी है, दे आर हंग्री एक और ट्रॉफी हासिल करने के लिए, इसलिए 28 वर्षीय 28 ईयर ओल्ड एजरी कोंजा ने कल 4 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी किए। और इधर लिवरपूल का 25 वर्षीय मिडफील्डर कर्टिस जोन्स इटली के चैंपियन टीम इंटर मिलान में चला गया 30 मिलियन पाउंड में। और वर्ल्ड कप का सीक्वल अभी भी जारी है, आपको याद होगा फाइनल में अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ियों ने काफ़ी धूम मचाई थी मैच के बाद। सो अर्जेंटीना फीफा ने अर्जेंटीना की पूरी टीम को और कुछ खिलाड़ियों को अधिकारियों को भी फाइन के रूप में जुर्माना भरना पड़ रहा है। मिडफील्डर लियांड्रो पारेदेस को 10 मैचों के लिए सस्पेंड किया गया है। इस बारे में सुनते रहिए। स्पेन के ला लीगा में कल रियल बेटिस ने रियल सोसिएदाद को 1-0 से परास्त किया। आज रात रियल मैड्रिड अपना पहला मैच खेलेगी स्पानियोल के मैदान पे। कल संडे को एल्चे वर्सेस एफसी बार्सिलोना। फ्रांस का लीग ए भी कल आरंभ हुआ एकदम धमाकेदार तरीके से। मार्सेई ने फोड़ ही डाला स्ट्रासबूर को, मार्सेई 4 स्ट्रासबूर 0। एडगुरी अब्दाला एंड होइबर्ग ऑन टारगेट फॉर ओलंपिक दे मार्सेई। आज रात और कल बाकी सभी मैच खेले जाएंगे। इटली का सीरिया भी आज से आरंभ हो रहा है। चैंपियन टीम इंटर मिलान खेलेगी मोन्जा के विरुद्ध। और मॉरिशस में क्रिकेट की बात करें तो आईसीई सीजन 4 का 4th सप्ताह आज दिन के 1 बजे से आरंभ हो रहा है। मापू एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड में आज दिन के 1 बजे कैंपस अब्रोड लायंस का मुकाबला एपीपी लेपर्ड से है। और कल सुबह 9 बजे वहीं पर एएमजी पैंथर्स खेलेंगे कॉन्टिनेंटल चीताज के विरुद्ध। और कल दिन के 1 बजे कैंपस अब्रोड लायंस फिर से मैदान पर उतरेंगे, इस बार उनका सामना वन हेल्थ जैगुअर्स से है। क्षेत्रीय फुटबॉल में पिची राफ्रे में कल संडे को एक वीकेंड फुटबॉल फिएस्टा रखा गया है। कल शाम 3 बजे यंग टाइडर्स वर्सेस टीबीएस एफसी। और कल ही शाम 4:30 बजे पिची राफ्रे वेटेरों का मुकाबला सैटरडे रोवर्स से। रोशनोआ दुदला बीमा सुविनियर कप के अंतर्गत कल शाम 3:30 बजे वहीं के मैदान पे स्काईलॉक एफसी का मुकाबला सिलेक्शन कोटेज से है। सो इंग्लिश प्रीमियर लीग की गाड़ी चल पड़ी, किमलेकू का पहिया भी चल पड़ा, इसलिए चलते रहिए और चलाते रहिए क्योंकि जीवन चलने का नाम है। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Thank you so much, Vikash ji, and shubh din aapko bhi.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

सैटरडे का नाम सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा हल्का हो ही जाता है। मंडे से फ्राइडे तक जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, सैटरडे को वही चीज़ हम बोलते हैं अरे कल कर लेंगे। और ऑनेस्टली कभी कभी कल कर लेंगे भी ज़रूरी है। आज थोड़ा अपने लिए समय आप निकालिए, अगर घर पर है तो ब्रेकफास्ट आप आराम से कीजिए, अगर बाहर निकालना है तो आप बिना जल्दी के

0: निकालिए, और अगर दोस्तों के साथ प्लान है तो फोन साइड में रखिए और उनके साथ समय बिताइए, और अगर कोई प्लान भी नहीं है तो और भी अच्छा। कभी कभी बिना प्लान का दिन ही सबसे अच्छा बन जाता है। बस एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, आज किसी एक ऐसे काम के लिए थोड़ा सा समय आप निकालिए जो आपको सच में खुशी देता है। म्यूज़िक सुनना हो, मूवी देखनी हो, कुकिंग करनी हो, या ड्राइव पर जाना हो, बस सोफा पर बैठकर कुछ नहीं करना हो, डू इट, बिकॉज सैटरडे इज नॉट आस्किंग यू टू बी परफेक्ट। सैटरडे इज सिंपली सेइंग थोड़ा एंजॉय भी कर लो, और रेडियो मस्ती पर हम भी वही कर रहे हैं। अभी 7:53 हो चला है, बस एक दो गाने ही शेष है, तब तो हम चले जाएंगे, बट हमारी मुलाकात फिर से होगी। तो चलिए अभी ये गाना हम सुन लेते हैं, फिर आपको हम बाय कहेंगे।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.
0: वैसे दो नहीं एक ही गाना शेष है, बस इसी गाने के साथ हम भी चले जाएंगे, एंड विल मीट टुमारो, सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, हैव अ वंडरफुल सैटरडे।

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: आठ बजे बाद सब लोगन के नमस्ते पेश बा भोजपुरी समाचार सब लोगन के फिर से नमस्ते आज फजीर से भंजन ग्रुप के सब 37 को पेट्रोल स्टेशन पर एगो नवा नाम और नवा लोगो नजर आए फिलिन ब्रांड के ई नवा पहचान के अनावरण काल सुख के 21 अगस्त के बोपलाव में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के उपस्थिति में करल गल गौरतलब है कि भंजन ग्रुप ईंधन वितरण करे होला प्रथम शत प्रतिशत मॉर्शन डल है समूह नवंबर 2025 में अपन सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के जरिए इंजन पेट्रोलियम मॉर्शस के अधिग्रहण करके ईंधन वितरण क्षेत्र में प्रवेश कर ले रहा भंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम भंजन विशेष रूप से मॉर्शस के कंपनी की क्षमता पर जोर देलन और बोलन कि स्थानीय कंपनी में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और विभिन्न क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करे के क्षमता बाते भंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपन निवेश जारी रखता फिलहाल 5 गो नवा भंडारण टैंक के निर्माण करल जाता जिकर पर लगभग 1 बिलियन रुपया के निवेश करल जाबा अपन संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत संगे कयन बरी से विकसित करल गल सहयोग और साझेदारी के उल्लेख करलन उ इ बात पर जोर देलन कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति लगातार अनिश्चित हो ले जातबा इही खातिर मॉरिशस के अपन ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखे खातिर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाए के जरूरत बाती गौरतलब है कि मॉरिशस के ग्लोबल बायोफ्यूअल्स अलायंस के बायोफ्यूअल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क खातिर पहला पायलट देश चुनल गल बा भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीफेसे मॉरिशस के दुदिन के आधिकारिक यात्रा पर रहलन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और हरदीप

0: सिंह पुरी के बीच एगो एमओयू के आदान प्रदान भी होल। एकर तहत इंडियन ऑयल लिमिटेड के माध्यम से 5 बरिस के अवधि खातिर मॉरिशस के ईंधन के आपूर्ति करल जाए। मॉरिशस अपन कोयला के खपत के 15% हिस्सा बायोमास से बदले के लक्ष्य तय कर दे बाते। ये लक्ष्य के हासिल करे खातिर वो भारत के विशेषज्ञता और सहायता ले। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन कालपोटवी में भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी संगे एगो एमओयू पर हस्ताक्षर करला के बाद दिलन। ये समझौता खासतौर पर जैव ईंधन यानी बायोफ्यूअल्स और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ल सहयोग पर आधारित है। हज यात्री के व्यवस्था करे होला प्रत्येक ऑपरेटर खातिर न्यूनतम तीर्थयात्री के संख्या 50 से बढ़ा के 100 कर देवल जाए। नवा प्रावधान के तहत इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड देने से परमिट जारी करे जाए से अक्टे ऑपरेटर के जमा कराए होला गारंटी राशि से संबंधित नियम भी निर्धारित करल गलबा। इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड पिलग्रमेज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 22 अगस्त 2026 यानी कि आज से लागू हुई मंत्रिमंडल के बैठक में ये नवा नियम के जायजा लेवल गल। एक अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन अपन वेबसाइट पर एगो सार्वजनिक चेतावनी जारी कर ले बा। एकर में मॉरिशस में डिस्ट्रीब्यूटेक्स नामक संस्था द्वारा करल जाय होला क्रिप्टो करेंसी से जुड़ल गतिविधि के प्रति लोगन के आगाह करल गल बा। FSC के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेक्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मौजूदगी बनैले बाती और मॉरिशस में कई गो स्थान से भी अपन गतिविधि संचालित करता। FSC मामला के जानकारी पुलिस के भी दे दिले बा जिमें जाँच करल जा सके। आशंका बाते कि डिस्ट्रीब्यूटेक्स पंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम संचालित कर सकी। मंत्रिमंडल इ मामला के जायजा लीलक। मॉरिशस में जल संसाधन की स्थिति अभी चिंताजनक बाते। कई गो जलाशय में पानी के स्तर कमती होइला के बावजूद CWA लोगन तक पानी के आपूर्ति बनाए रखे के कोशिश जारी रखता। देश की जरूरत के पूरा करे खातिर नदी सहित पानी के कई गो स्रोत के इस्तेमाल करल जा रहा। साथ ही उपलब्ध जल संसाधन के मजबूत करे के और मौजूदा स्थिति के बेहतर तरीका से निपटे खातिर नवा परियोजना पर भी विचार करल जा रहा। मंत्रालय देने से इस संबंध में जल्द ही नवा घोषणा करेल जाए की उम्मीद बाती। मॉरिशस सरकार खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाए खातिर एगो व्यापक योजना पर काम करता। योजना में स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल नवा किस्म के विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल बा। फेगिना जिकरा नोआ कांसेंग के नाम से भी जानल जाला ऐसन ही एगो नवा बीन्स की किस्म है। एकर अच्छा उपज और जस्ती लौह मात्रा यानी आयरन के मात्रा खातिर चुनल गल बा। सरकार इस किस्म के बीज पर 75% सब्सिडी दे के व्यवस्था कर ले बाते। ये बीज के IMB में 130 रुपया प्रति किलो के कीमत पर उपलब्ध बाते। और दूसरे देश के समाचार में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रीवी रिह में एगो शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमला में कम से कम 15 जना की मौत हो गल बा। हमला में 130 जना घायल होल हवन सा जेकर में 23 गो लड़का शामिल बा। मलबा में अभी भी और लोगन फंसल बाते। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ये हमला के निंदनीय और घृणित बतैलन। उनकर अनुसार दिन में होल ई हमला के दुगो चरण में अंजाम देवल गल। दूसर हमला में घटना स्थल पर मौजूद आपातकालीन और बचाव कर्मी के निशाना बनावल गलबा। एकरी संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Podcast Tadka.
1: RM2.
2: So well friends, a very good morning. That's your timeless तड़का सुबह के 8:12 Saturday morning 22nd of August. मैं हूँ परी आपके साथ and I do hope that weekend की शुरुआत एकदम मस्त एकदम जबरदस्त हुई है. वैसे वीकेंड इज हियर दोस्तों एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी हैविंग लोड्स ऑफ प्लान्स. आज के जो भी है आपके प्लान्स, नॉट टू फॉरगेट हमारा गुड म्यूजिक.

0: मनीषा आपके साथ. सो आफ्टर दैट भोजपुरी सॉन्ग. अभी के लिए जानते हैं कि कैसा रहेगा मौसम का हाल ऑन दिस वीकेंड. ऑन दिस सैटरडे आपके लिए क्या है मौसम के प्लान्स और मौसम के हिसाब से क्या होने वाला है आपका प्लान, ये सब जानते हैं. लेकिन फॉर नाउ अभी के लिए लेकर आए हैं आपके लिए वेदर अपडेट्स.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ओनली टू विनर्स.
3: मौसम का हाल. आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दिन के दौरान बादल घिराएंगे और विशेषकर ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी. धीरे धीरे रात के दौरान आसमान में बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी. कोहरा छाएगा और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे. खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है. तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच. अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर.
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de Nature's Juice à 76,95 et le pack de 24 rouleaux de papier toilette Winners à 369,95. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners!
1: Timeless Tadka.
4: RM2.
1: Timeless Tadka.
6: La la la la la.

0: RM2 Radio Musty.
1: एंड वेल वीकेंड मोड जहां पर फैमिली के साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज बना पाएंगे. सो आज की इस मॉर्निंग में शामिल होता हुआ ये गाना गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ. नानी शोभा यहाँ पर भेज रही है प्यार उनके भाइयों के नाम, सभी उनके जो ब्रदर्स हैं यूल, नाथन एंड पाउलो, सभी गौरी परिवार के लिए एंड बहुत सारी गुड विशेज, गेट वेल सून विशेज, ये है फॉर हर डियरेस्ट ब्रदर. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हमारे कुछ और दोस्त हमारा साथ दे रही हैं. कविता जी, गाना होगा आपके नाम, इसी ट्रैक के साथ आपको विश कर रही हैं वेरी गुड मॉर्निंग, और मॉर्निंग की शुरुआत हुई है. सो लेट्स मेक इट स्पेशल, ये गाना आपके लिए फॉर ऑल योर लव्ड वन. यहाँ पर झाना जी आप भी साथ निभा रही है और कहती है रेडियो मस्ती सुन रही हूँ. आज बेटी जनिता अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी स्पेशल विशेज. सो ये गाना आपकी प्यारी बेटी जनिता के नाम, हैप्पी बर्थडे विशेज. साथ ही विशेज लेकर आए हैं शेष्टा, अंशनी, सिल्विया, रीमा और जनिता. युवक ऋषि शिवसरन परिवार विश करना चाहते हैं उन्हें अ वेरी हैप्पी बर्थडे. सो एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ, कुछ खूबसूरत गानों के साथ बनेंगे आपके म्यूजिकल हम सफर. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: So well friends, आज के लिए बस यही रिमाइंडर कि हर सुबह याद दिलाती है कि yesterday was a history and tomorrow is still unknown. और आज को बस दिल से जीना है, अपने सपनों पर भरोसा रखना है और छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना है. Because life is not just about reaching the destination, लेकिन it's all about cherishing the journey. So आज के दिन को enjoy करें और हर

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों अभी के लिए साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती सुबह के 8:50 सैटरडे मॉर्निंग है और आपकी गुड विशेस यहां पर पहुंच गई हैं ऑन 5499-1294 सो तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू सो मच आपने कनेक्ट किया है और चूज किया है रेडियो मस्ती को एज योर रेडियो पार्टनर एंड वेल यहां पर हमारा साथ दे रही हैं अंजनी जी फ्रॉम कटरबोन डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर समवन वेरी वेरी स्पेशल यहां पर आपका मैसेज तो आधा आया है सो अगर आप मैसेज व्हाट्सएप के जरिए हमें पहुंचा सकती है आई वुड बी ग्रेटफुल Well, so 5499-1294 same number पर आपके मैसेज का इंतजार रहेगा एंड यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विशेज ये है फॉर ब्रदर रवि और आप है मौसलमो सिंह तौंद्रे से विशेज कमिंग फ्रॉम योर वाइफ उषा साथ में है बेटी उषी और परी बसंती जूतन फिया सनी मीनाक्षी और सभी परिवार भेज रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार ऑन योर स्पेशल डे वेल यहाँ पर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं बहुत सारे लोग विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू जनिता सिवसरन ऑफ अफलाक विशेज लेकर आई हैं मौसी सकुन मौसा क्रिसन साथ में है उनके कजिन सल्विया और उनके लिए लव एंड ब्लेसिंग्स ये है पूरे परिवार की ओर से हैप्पी बर्थडे टू मिस वीमा और उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज सभी कलीग्स टीचर्स की ओर से सिमी विमी लैला टिया है सोमू और प्रिया रवि एशले सुमिता पिंकी वनिशा एंड ललिता उन्हें विश करना चाहती हैं वेरी हैप्पी बर्थडे सो गुडी गुड विशेज ऑन योर स्पेशल डे और चलिए यहाँ पर आपके बॉस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका नाम है अविनाश अमर उन्हें विश कर रहे हैं वे हैप्पी बर्थडे सो चलिए थोड़ी ही देर में ट्राई करेंगे उन्हें सरप्राइज करने के लिए एंड अभी के लिए तो जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं हमारी साथ कनेक्टेड हैं ऑन 22nd ऑफ अगस्त इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे दिस वन गोज़ आउट फॉर यू

0: रेडियो मस्ती।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: नॉर्थ, साउथ,
3: 103.5,
2: ईस्ट, वेस्ट,
3: 96.4,
2: सेंटर,
3: 99.4।
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check exactly 9 a.m.

0: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं करुणा लालू। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार किरण, सभी को नमस्कार। आज सुबह बंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आ रहा है। फिलिन ब्रांड की इस नई पहचान का अनावरण कल शुक्रवार 21 अगस्त को बुपलो में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। गौरतलब है कि बंजन ग्रुप ईंधन वितरण करने वाला प्रथम शत प्रतिशत मॉर्शन समूह है। समूह ने नवंबर 2025 में अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के जरिए इंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण कर ईंधन वितरण क्षेत्र में प्रवेश किया था। बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने विशेष रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। बंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपने विशेष निवेश को भी जारी रखे हुए हैं। फिलहाल 5 नए भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 बिलियन रुपए का निवेश किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत के साथ वर्षों से विकसित किए जा रहे सहयोग और साझेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, इसलिए मॉरिशस को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। और तलब है कि मॉरिशस को ग्लोबल बायोफ्यूअल्स अलायंस के बायोफ्यूअल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार से मॉरिशस के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और हरदीप सिंह पुरी के बीच एक एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। इसके तहत इंडियन ऑयल लिमिटेड के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए मॉरिशस को ईंधन की आपूर्ति की जाएगी।

0: मॉरिशस कोयले की जगह बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाएगा। मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री पार्थ कास्यावाडन ने कल पोर्टी में भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद दी। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिवी रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। हमले में 130 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 23 बच्चे शामिल हैं। मलबे में अभी भी और लोगों के फंसे होने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को निंदनीय और घृणित बताया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
1: Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.
2: So well friends, that's your timeless tadka. सुबह के 9:11, a warm welcome. अगर अभी अभी मीठी नींद से जागे हैं, good morning wishes आपके नाम already हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इस आवर में आपका हम स्वागत करते हैं. परी का साथ रहेगा till 11 and yes, timeless melodies आप तक हम पहुंचाती रहेंगे कुछ beautiful songs के साथ. आपको विश करने आए हैं a very good morning and a wonderful weekend. चलिए अभी के लिए आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, so not to forget your messages, your dedications happening 5499-1294 पर.

0: एक्सप्रेस तड़का
1: RM2।
2: तो चलिए दोस्तों, दैट्स योर टाइम लिस्ट तड़का सुबह के 9:24 सैटरडे मॉर्निंग कनेक्टेड है आप रेडियो मस्ती के साथ। आगे हैं आपकी मैसेजेस, आपकी डेडिकेशंस वीकेंड में आपके अपनों के नाम। एंड वेल, नीतू हमारा साथ दे रही हैं। आप है नीतू सुकन लालमाती से, एक गीत आपके नाम, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के लिए। बिल्कुल नीतू, एक ब्यूटीफुल ट्रैक होगा फॉर यू एंड फॉर योर लव्ड वंस। दाविसेन लालमाती से साथ दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग आपको, आई डू होप दैट यू आर एंजॉयिंग योर वीकेंड। दाविसेन, गाना होगा आपके नाम, सेंडिंग गुड विशेस हमारे पूरे टीम की ओर से। श्याम देवीचरण यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ऑलरेडी एट द सी साइड अपने दोस्तों के साथ। मेविन, राजू, सैमुअल अलॉ है साथ में, है राहुल, अनिल, केविन, व्यास, श्याम और सभी देवीचरण परिवार फ्रॉम पेबे हमारा साथ दे रहे हैं आप। सो गाना आपके नाम। बोराकाई से आज विकास एंड संध्या अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेस्ट विशेस लेकर आए हैं सभी कीरू परिवार। और यहाँ पर खूबलाल परिवार हमारा साथ दे रहे हैं रिवर जोहांपा से। सुबह से ऐसे ही अपनी गुड विशेस, अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए फरीका साथ। एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: से बॉलीवुड रेडियो मस्ते
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
3: तो वेल फ्रेंड्स, वीकेंड की सुबह, वीकेंड की शुरुआत हो गई है और हम तो आए हैं अर्ली मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग कहने. वीकेंड में तो भाई 8 बजे भी अर्ली ही लगता है, बिकॉज एवरी डे यू वेक अप सो अर्ली कि वीकेंड में मन करता है कि देर तक सोए ना, कोई अलार्म क्लॉक्स ना कोई ऑफिस का काम काज, बस रिलैक्स करना है, आराम से उठना है, स्लो मॉर्निंग्स को एंजॉय करना है, स्लो स्टार्ट को एंजॉय करना है. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. जैसे हम कहते हैं, कभी कभार छोटी छोटी खुशियाँ ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाती है. कभी कभार टाइम आता है कि आप आपके जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें काउंट करना भूल जाते हैं. एंड एक टाइम ऐसा भी आता है कि यू रियलाइज के ओ माय गॉड, वो भी क्या दौर था जब हम हर एक पल को एंजॉय करते थे. तो क्यों ना उस पल को हम आज ही बना दें, यानी कि ये जो मोमेंट्स आपको मिले हैं, ये जो स्पेशल पल आपको मिले हैं, इन्हें आप थोड़ा सा और ख़ास बना सकते हैं आपके स्पेशल मैजिकल टच के साथ. सो मेक दिस डे काउंट. और आज का दिन यानी कि 22nd of August ये दोबारा तो लौट कर आने नहीं वाला. 22nd of August 2026 बस आज ही की बार आया है, आज ही के दिन आया है. सो मेक इट स्पेशल एंड मेक दिस डे काउंट. मेक सम ब्यूटिफुल मेमोरीज और ऐसी मेमोरीज जिन्हें आप हमेशा याद करके मुस्कुराएं. तो अभी के लिए यहां पर लव एंड ब्लेसिंग्स, ये है फॉर लवली कपल आशीष एंड दिया. उनके घर आए हैं एक क्यूट बेबी गर्ल और उनके लिए बहुत सारा प्यार. लव एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम दादा संजीव, दादी अंजनी, ग्रैंड दादी भगवंती एंड ऑल कालुआ जमुना एंड चिनापन फैमिलीज. एंड गुड गुड विशेस टू यू आशीष एंड दिया. हम भी आपको विश कर रहे हैं बहुत सारा प्यार एंड लोड्स ऑफ लव टू लिटिल लिटिल एंजल जो आपकी लाइफ में लेकर आई हैं बहुत सारी खुशियाँ. साथ ही यहाँ पर कवि जी हमारा साथ दे रहे हैं. वाह, नाम ही कवि है तो कुछ कविता सुना देते, लेकिन थैंक यू सो मच हमारा साथ दे रहे हैं आप. एंड यू एंजॉयिंग द सिलेक्शंस, ये जानकर अच्छा लगा. सो गाना होगा आपके नाम. साथ ही यहाँ पर गाना हो जाए फॉर मिस करिश्मा एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम समवन वेरी वेरी स्पेशल. चलिए यहाँ पर सीता गीता बोलू राम हमारा साथ दे रहे हैं आप भी. सो गाना होगा आपके नाम. सभी जूतन परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो आई डू होप दैट यू आर हैविंग अ नाइस टाइम एंड यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस हैपनिंग 5499-1294 पर. सो अभी के लिए तो हम जानते हैं दैट शादी का सीजन चल रहा है. एवरी डे यहाँ पर गुड ही गुड विशेज आ जाती हैं और साथ ही ये है स्पेशल स्पेशल विशेज फॉर समवन वेरी स्पेशल जो शादी के बंधन में बंधने जा रही है. दिस वन गोज आउट फॉर यू मीनाक्षी एंड आप शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं विथ योर स्पेशल समवन. 14 ईयर्स का रिश्ता फाइनली अब मुकाम पर आ रहा है. सो बहुत सारी गुड विशेज टू यू एंड टू योर बेटर हाफ. ये है फॉर आशीष एंड फॉर यू मीनाक्षी. विशिंग यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. RM2 रेडियो मस्ती की टीम की ओर से गुड विशेज एंड कंग्रेचुलेशंस.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Mesty, your number one beloved station.
1: और चलिए इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. गोज आउट फॉर मामा रति, पापा किशन, बॉबी विराज, मामा दीपा पुदुदो हैमलेट से हमारा साथ दे रही हैं, आशीष सोहाती. दिस वन गोज आउट फॉर योर स्वीट फैमिली. और चलिए 13 डिग्रीज इन बेल्जियम, प्रकाश वैद्य जी सात समंदर पार से हमारा साथ दे रही हैं आप. सो सेंडिंग लोड्स ऑफ लव एंड वार्म्थ फ्रॉम मॉरिशस आपके लिए. एंजॉय योर वीकेंड और बहुत सारा प्यार आपके नाम सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दैट्स योर टाइमलेस तड़का. विद दिस ट्रैक हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर. मुलाकात होगी नेक्स्ट आवर में. कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड परी का साथ दिन के 11 बजे तक.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। मॉरिशस ने जैव ईंधन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक नया रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। इस पहल के तहत गन्ने की खोई यानी कि बागास, बायोमास, जैविक कचरे और इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल जैसे कई स्रोतों से अपनी ऊर्जा पैदा करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर मॉरिशस की निर्भरता कम करना है। इस रणनीतिक ढांचे की शुरुआत कल पोर्टवी में भारत के सहयोग से की गई। ये पहल उस फैसले के बाद सामने आई जिसके तहत मॉरिशस को बायोफ्यूल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया है। हज यात्रियों की व्यवस्था करने वाले प्रत्येक ऑपरेटर के लिए न्यूनतम तीर्थयात्रियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड की ओर से परमिट जारी किए जाने से पहले ऑपरेटरों को जमा कराने वाली गारंटी राशि से संबंधित नियम भी निर्धारित किए गए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसमें मॉरिशस में डिस्ट्रीब्यूटेक्स नामक संस्था द्वारा की जा रही क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों के प्रति लोगों को सतर्क किया गया है। एफएससी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेक्स वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मौजूदगी बनाए हुए हैं और मॉरिशस में कई स्थानों में भी अपनी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। एफएससी ने मामले की जांच पुलिस को भी दे दी है ताकि इस पर तहकीकात की जा सके। आशंका है कि डिस्ट्रीब्यूटेक्स पंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम संचालित कर सकती है। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद सेंट्रल वाटर अथॉरिटी लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों सहित पानी के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जल्द ही नई घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है। मॉरिशस सरकार खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस योजना में स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों का विकास और शिक्षा तथा प्रशिक्षण शामिल हैं। फेगिना, जिसे नुआ 45 के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे ही एक नई बीन्स की किस्म है। इसे इसके अच्छी उपज और अधिक लौह यानी आयरन मात्रा के लिए चुना गया है। सरकार ने इस किस्म के बीज पर 75% सब्सिडी देने की व्यवस्था की है। इसके बीज AMB में 130 रुपये प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध है। और विदेश में शनिवार आधी रात से कनाडा के कई सामानों पर अमेरिका के नए टैरिफ लागू हो गए हैं। ये कदम व्यापार वार्ता

0: आखिरी समय में विफल होने के बाद उठाया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। Un passé, Johnny Ball a croisé Petite Rivière, mais 74 Salki, 74-year-old, Shrimati Kunti Biku, Shrimati Kunti Biku, Pedaj Nam Akalu, jo Madame Vieille se jaani jaati thi, ki mrityu ho gayi hai. Arthi, aaj din ke ek baje, inke makan, Un passé, Johnny Ball a croisé Petite Rivière se utha kar da sanskar ke liye, शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Timeless तड़का। RM2 Timeless तड़का।

0: Bez Tarka.
1: RM2.
2: और चलिए दोस्तों टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ जहां पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. सो यस, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द यहां पर एक शानदार कॉन्सर्ट होने वाला है, यहां पर यानी कि मॉरिशस में एक शानदार कॉन्सर्ट होने वाला है. और शान इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट बिलव्ड प्लेबैक सिंगर्स, नोन फॉर हिज स्मूथ सोलफुल एंड वर्सटाइल वॉइस. और इस कॉन्सर्ट को आप एंजॉय कर पाएंगे. सो लेट मी टेल यू, दिस गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu. एंड यहाँ पर आपको RM2 रेडियो मस्ती चांस दे रहा है टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव. खेलें आप रेडियो मस्ती के साथ और आप जीत सकते हैं गोल्ड टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट. सो यहाँ पर डिटेल्स आपको देंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन आपके लिए एक सवाल भी हम लेकर आए हैं. सो आपके लिए सिंपल सा सवाल जो जुड़ा हुआ है आपके फेवरेट सिंगर शान के साथ. आपको हमें बताना है हाउ लॉन्ग हैज शान बीन इन म्यूजिक इंडस्ट्री, कितने साल से शान हैज बीन इन म्यूजिक इंडस्ट्री. इज इट ए 10 years, इज इट बी 20 years, या फिर सी मोर देन 30 years. आपके सही जवाब 54991294 पर, 54991294 पर, आपके पूरे नाम और पते के साथ. सवाल एकदम सिंपल सा है, आपको हमें बताना है कि शान म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने साल से हैं. इज इट 10 years, 20 years, या फिर मोर देन 30 years. राइट आंसर्स ऑन 54991294. ऑल द बेस्ट.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: चलिए सो यहाँ पर आपने खिला आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ और पूछा था आपसे सवाल दैट शान म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने साल से हैं, 10 साल 20 साल या फिर मोर देन 30 इयर्स, एंड द राइट आंसर इज मोर देन 30 इयर्स। ओ माय गॉड, 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं शान को हम सबको एंटरटेन करते हुए और अब उनकी आवाज को हम लाइव सुन पाएंगे। सो वेल, यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब। लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गई है हमारी लकी विनर, आप है निशी गोपी दौलत, आप लस्कालिये से कंग्रेचुलेशंस। सो वेल निशी, आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब और आपने खेला आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, जीती है एक गोल्ड टिकट टू असिस द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कॉन्सर्ट, वन वॉइस वन स्टेज वन अनफॉरगेटेबल नाइट, होने वाला है एट SVICC ऑन 5th of September 2026 एज फ्रॉम 8 PM, प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ticketbox.mu। सो लेट मी टेल यू, शान इज वन ऑफ द मोस्ट बिलवड सिंगर्स नोन फॉर हिज स्मूथ सोलफुल एंड वर्सटाइल आवाज। 1990s से उनकी आवाज बॉलीवुड में गूंजती आ रही है, रोमांटिक मेलोडिक एंड फील गुड सॉन्ग्स हमने उनके सुने हैं। Over the years, Shan has delivered numerous memorable hits across Hindi cinema and Indian pop music, earning strong fan following across generations. So, ab unki awaaz ko hum live enjoy karne wale hain at SVICC Pi on 5th of September as from 8 PM. And let me tell you, the game was powered by ticketbox.mu. So, ek baar phir congratulations kahenge hamari pyari si winner Nishi Gopi Daulat. Aap jeet gayi hain ye Shan.

0: tips powered by Halkuri Fashion, House of Ready-Made Garments. Timeless Tadka
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ फैशन टिप्स आपसे शेयर करेंगे, बात करेंगे कलर्स एंड स्टाइल के बारे में. ब्लैक इज ऑलवेज अ सेफ बेट. ब्लैक आउटफिट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता. अगर ऑल ब्लैक लुक कैरी कर रहे हैं तो एक गोल्ड ज्वेलरी या फिर कलरफुल बैग ऐड कर सकते हैं आपके लुक को एलिवेट करने के लिए. पेस्टल्स होते हैं फॉर दैट एलिगेंट टच. बेबी पिंक, लैवेंडर, पाउडर ब्लू, मिंट ग्रीन, पेस्टल शेड्स सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड लगते हैं और डे टाइम लुक के लिए ये एकदम परफेक्ट होते हैं. अर्थी टोन्स देते हैं एकदम क्लासी वाइब्स. बेज, ऑलिव, कैमल रस्ट या फिर चॉकलेट ब्राउन, ये कलर्स टुगेदर एक रिच सोफिस्टिकेटेड लुक क्रिएट करते हैं. इसे आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं. एंड रेड जब आपको स्टैंड आउट करना होता है, सो रेड इज अ स्टेटमेंट कलर. अगर रेड ड्रेस या टॉप पहना है तो बाकी स्टाइलिंग मिनिमल होनी चाहिए. लेट द कलर स्पीक ऑफ फॉर इटसेल्फ. सो यहाँ पर कुछ कलर्स जो हमेशा वर्क करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए. और जैसे हम कहते हैं, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे म्यूजिकल.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय Halkuri Fashion, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
1: RM2
3: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

0: to Radio Musty.
1: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture là, méga promo lot plein de produits. Morbe à partir de 25 roupies, granit à partir de 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, vine découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac. Numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
0: RM2
2: Radio Musty.
3: With this track, it's time for Pari to say goodbye. Thank you so much. आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया on RM2 Radio Masti. और थोड़ी देर में आप enjoy कर पाएंगे बोले बॉली ब्रंच प्रोग्राम. So stay connected Radio Masti के साथ. Wishing you all a wonderful Saturday. मुलाकात होगी कल same time 8 से लेकर 11 बजे तक in your timeless तड़का. तब तक के लिए अपने weekend को बनाइए खास and special RM2 Radio Masti के गानों के साथ.

0: 95.5
1: East West
0: 96.4
1: Center
0: 99.4
2: RM2 Radio Musty.
3: Radio Musty.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check exactly 11 a.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें करुणा जी से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी. सभी को नमस्कार. एंजन का नाम बदलकर फिलिन हो गया है. प्रथम स्थानीय वितरक भंजन ग्रुप ने कल बुपलों में आधिकारिक तौर पर अपनी नई पहचान का अनावरण किया. आज सुबह से भंजन ग्रुप के सभी 35 पेट्रोल स्टेशनों पर नया लोगो फिलिन देखा जा सकता है. कल अनावरण के समय अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत के साथ वर्षों से विकसित किए गए सहयोग और साझेदारी का उल्लेख किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, इसलिए मॉरिशस को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है. भंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम भंजन ने खास रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया. उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है. भंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश जारी रख रहा है. फिलहाल 5 नए भंडार टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 बिलियन रुपए का निवेश किया जा रहा है. मॉरिशस ने जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक नया रणनीतिक ढांचा तैयार किया है. इस पहल के तहत गन्ने की खोई यानी बागास, बायोमास, जैविक कचरे और इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल जैसे कई स्रोतों से अपनी ऊर्जा पैदा करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है. विदेश में शनिवार आधी रात से कनाडा के कई सामानों पर अमेरिका के नए टैरिफ लागू हो गए हैं. ये कदम व्यापार वार्ता आखिरी समय में विफल होने के बाद उठाया गया. शुक्रवार रात की समय सीमा से कुछ ही समय पहले बातचीत रोकने की घोषणा करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने कहा कि वो अमेरिकी सामानों पर डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाबी टैरिफ लगाएंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्रस्तावित शर्तों में आखिरी समय पर किए गए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से अव्यवहारिक थे और उन्होंने किसी भी संभावित समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए. इसके साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार. क्रिमिशन रोड रिश्मो में 81 साल की 81-year-old श्रीमती द्रौपदी भुजियावन पैदाइश नाम टैंगो जो राधा से जानी जाती थी और पंडित श्रद्धानंद भुजियावन की पत्नी थी की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान क्रिमिशन रोड रिश्मो से उठाकर दाह संस्कार के लिए रिश्मो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. ला शापेल और डॉट पॉइंट साबलो में 75 साल की 75-year-old श्री केशवराव पड्डू जो कृष्णा गौसोटायर से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. ये पहले नंबर 20 एवेन्यू विल्सन बेलहोज रहते थे. अर्थी जो हैं आज शाम 4 बजे एलियन सन्स ला शापेल और डॉट पॉइंट साबल से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौलिविय की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Body Brunch,
0: RM2, Radio Musty.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: ग्यारह बजकर 7 मिनट हुए हैं और डेट पर आज निर्मनी आपको लेकर जाने वाली है बॉली ब्रंच की डेट पर। यस, 2 बजे तक आपके लिए बरसात की तरह अमेजिंग गाने बरसाते रहेंगे। अगर इस वक्त आप रास्ते पर हैं, ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, क्योंकि हल्की सी बारिश हो रही है एंड आपको कंपनी के लिए RM2 रेडियो मस्ती यहीं पर है। सो एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। Shan live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius. RM2
1: Radio Musti.

0: मस्ती ब्रांच
1: आर एम टू रेडियो मस्ती।
2: आपको बताया दोस्त, आज है नेवर बीन बेटर डे। कभी कभी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम बोलते हैं यार इससे बुरा क्या ही हो सकता है, और फिर टाइम के साथ समझ आता है कि एक्चुअली इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से कुछ लोगों को, सिचुएशंस को और कुछ चीज़ों को निकालते हैं, हमें पनिश करने के लिए नहीं, लेकिन हमें क्लैरिटी, पीस और थोड़ी सी मेंटल स्पेस देने के लिए। जो चीज़ जाने के बाद आपको सुकून मिले, समझ जाओ कि गॉड हैज़ नेवर बीन बेटर अपडेट इंस्टॉल हो चुका है आप में। तो आज नेवर बीन बेटर डे पर बस इतना याद रखिए कि हर गुड बाय लॉस नहीं होता, कुछ गुड बाय इज एक्चुअली ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज होते हैं। सो अभी के लिए द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन आरएमजी रेडियो मस्ती विद नीलमणि। आप बस साथ देते रहिए।
0: बॉडी ब्रांच आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: यस, बॉली ब्रंच में अभी है गॉसिप टाइम। एंड गॉसिप में नाम है गोविंदा जी का। 63 की एज में भी हीरो नंबर वन की पर्सनल लाइफ फुल ऑन बॉलीवुड स्क्रिप्ट बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी सुनीता ने उनकी यंग एक्ट्रेस कोमल के साथ एलिजेड क्लोजनेस को लेकर कमेंट किया था, लेकिन होल्ड ऑन ये अभी भी एलिगेशंस और रूमर्स है, कंफर्म्ड अफेयर नहीं है। और ट्विस्ट तो ये है कि डिवोर्स की बात भी चल रही थी, लेकिन सुनीता जी ने डिवोर्स पिटीशन विथड्रॉ कर लिया। गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक कपल के बीच में अब सेपरेशन नहीं है, मतलब बॉलीवुड में रिटायरमेंट सिर्फ एक्टिंग से होती है, कंट्रोवर्सी से नहीं। एंड ऑनेस्टली एज कोई भी हो, दिल और ड्रामा दोनों कभी भी रिटायर नहीं होते। तभी उसी के एक मूवी का एक गाना सुनते हैं, इश्क सोना, आपको याद है वो गाना? चलिए वापस रिफ्रेश कराते हैं आपकी मेमोरी को।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: भुलाया नहीं जा सकता जो हुआ, स्पेशली जब अरिजीत सिंह गा रहा हो। कुछ यादें होती ही ऐसी है, टाइम बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन एक अरिजीत का गाना बजता है और पूरा फ्लैशबैक वापस आ जाता है। अरिजीत सिंह की आवाज में वो बात है ना, दर्द भी क्लासी लगता है और मेमोरीज भी थोड़ी ज्यादा स्पेशल। तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए जुबिन नौटियाल की आवाज में द काबिल सॉन्ग।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा जी नमस्कार।
6: नमस्कार नीलमणि सभी को नमस्कार। इंजन का नाम बदलकर फिलिन हो गया है। प्रथम स्थानीय वितरक बंजन ग्रुप ने कल बोपलो में आधिकारिक तौर पर अपनी नई पहचान का अनावरण किया। आज सुबह से बंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर नया लोगो फिलिन

देखा जा सकता है। अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत के साथ वर्षों से विकसित किए गए सहयोग और साझेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, इसलिए मॉरिशस को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने खास रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। बंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश जारी रख रहा है। फिलहाल 5 नए भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 बिलियन रुपए का निवेश किया जा रहा है। मॉरिशस ने जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक नया रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। इस पहल के तहत गन्ने की खोई यानी बागास, बायोमास, जैविक कचरे और इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल जैसे कई स्रोतों से अपनी ऊर्जा पैदा करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म यानी फसिल ईंधनों पर मॉरिशस की निर्भरता कम करना है। हज यात्रियों की व्यवस्था करने वाले प्रत्येक ऑपरेटर के लिए न्यूनतम हज यात्रियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड की ओर से परमिट जारी किए जाने से पहले ऑपरेटरों को जमा कराने वाली गारंटी राशि से संबंधित नियम भी निर्धारित किए गए हैं। और विदेशी स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि सोमालिया में बच्चों के बीच जाने व कुपोषण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती के बाद 200 से अधिक स्वास्थ्य और पोषण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। यूनिसेफ ने बताया कि 2026 के पहले 6 महीनों में गंभीर तीव्र कुपोषण और उससे जुड़ी जटिलताओं के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती बच्चों की संख्या में 32% की वृद्धि हुई है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रे कुवेंट डी लोरेट क्यूपिपमें 97 साल की 97 ईयर ओल्ड श्रीमती दमवंती गोवर्धन पैदाइशी नाम दमादर सिंह जो दमवंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे देवेंद्रनाथ सिंह गोवर्धन के मकान रे कुवेंट डी लोरेट क्यूपिप से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: पॉली ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Hey, yeah, good afternoon, it's Nalmani और अभी आप कनेक्टेड हो चुके हो अपने बॉली ब्रंच में RM2 रेडियो मस्ती पर। हाँ, बज कर 8:09 हुए हैं और अगर अभी आप लंच कर रहे हो या फिर लंच करने जा रहे हो, बन अपेटी टू यू। बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बस जुड़े रहना एंड कीप एंजॉयिंग द गुड वाइब्स जो भी चल रहा है ऑन दिस सैटरडे आफ्टरनून RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: Body Branch
1: RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: गोलमाल गोलमाल जरूरी है ना लाइफ में। कभी कभी लगता है अगर लाइफ में थोड़ा गोलमाल ही ना हो तो मजा कैसे आएगा। हर दिन परफेक्ट हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ना आए तो लाइफ थोड़ी बोरिंग नहीं हो जाएगी। थोड़ा ड्रामा, थोड़ी मस्ती, कुछ उलझन, कुछ ये क्या हो रहा है भाई, ये मोमेंट्स है ये जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि गोलमाल हो लेकिन कंट्रोल के बाहर ना हो, क्योंकि लाइफ एक बॉलीवुड मूवी की तरह है। इंटरवल के बिना क्लाइमैक्स का मजा ही क्या। पर नाउ वी डाइव राइट बैक पॉली ब्रंच के सफर में विद अनदर अमेजिंग सॉन्ग जिन्होंने बहुत से दिल जीते हैं। सुन लेते हैं साथ में, वाइब करते हैं RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी का इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम आशर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: Radio Musti।

0: मॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: गाने में बोलता है कि कोई मिले या ना मिले, खुद से खुश रहना अति आवश्यक है। अब सोच रहे होंगे कि भाई अनमनी को क्या हुआ। वेल, जरूरी है यार अपने लिए सोचना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम काम पर जाते हैं, सब कुछ रश में करते हैं, लेकिन आराम से कब बैठते हैं खुद के साथ? अगर नहीं किया आज सैटरडे पर, अगर थोड़ा टाइम मिले बैठिए और रिफ्लेक्ट कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट, स्पेशली जब आप इंटरनली खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। नमनी के पास और भी कुछ ऐसे टिप्स हैं, बस आप जुड़े रहना एंड म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए। ऐसे ही इट्स योर बॉली ब्रंच 2 बजे तक।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: वो गाना ही क्या जो हमें बहने ना दे, सपने देखने ना दे या फिर भागने ना दे। बह गया ना आपका मन भी। वैसे सुनिधि चौहान के फैंस के लिए लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि शी रिसेंटली अपीयर ऑन कौन बनेगा करोड़पति 18, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कन्फेस किया कि बिग बी उनका फर्स्ट क्रश था। उन्होंने शो पर ये मेरा दिल गाना भी परफॉर्म किया। तो चलिए, मन को रोकना नहीं है, बस भागते चलना है। टाइम भी भाग रहा है, 15 मिनटों में इट्स गोइंग टू बी 1 o'clock सून। सो अनदर गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट आपके नाम बॉली ब्रंच में ही।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: चुरा लिया तो शान ने है दिल को यस अपनी आवाज से वो जल्दी ही रॉक करने वाले हैं मॉरिशस में कब 5 सितंबर 2026 को RSVICC as from 8 PM तो अगर आप हो शान के फैन आई डोंट हेजिटेट टू कीप इन टच विद यू RM2 रेडियो मस्ती क्योंकि बहुत से गेम्स होंगे जहां पर आप जीत सकते हो एक टिकट टू दिस अमेजिंग कंसर्ट फना हुआ आखिरी गाना हो जाए सेकेंड आवर का फिर मिलेंगे फ्लैश इन्फो के बाद
0: Body Branch RM2 Radio Masti
2: It's a unisex song

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
4: नमस्कार निर्मनी, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस में पूरी तरह से मॉरिशस की स्वामित्व वाली पहली ईंधन वितरण कंपनी का आगमन हुआ है। फिलिन नाम के इस नए ब्रांड का स्वामित्व बंचन ग्रुप के पास है और ये उसकी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड के माध्यम से संचालित होगा। इसका आधिकारिक शुभारम्भ कल शाम बोपलों स्थित लावोचो जिसख में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड ने नवंबर 2025 में 2.5 बिलियन रुपए से ज़्यादा की राशि में एंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण किया था। आज सुबह से ही नेटवर्क के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर नए ब्रांड फिलिन के रंग और पहचान दिखाई देने लगी हैं। बंचन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। 37 पेट्रोल स्टेशनों के नए रूपों में बदलाव के अलावा समूह की सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड ईंधन भंडारण के लिए 5 नई टंकियों के निर्माण में 1 बिलियन रुपए का निवेश भी करेगी। इस निवेश से देश में ईंधन भंडारण की कुल क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने भंजन ग्रुप की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय समूह

0: देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में पहली बार मॉरिशस के पास 100% मॉरिशन स्वामित्व वाला ईंधन वितरण नेटवर्क होगा। उनके अनुसार ये साबित करता है कि मॉरिशस की कंपनियों के पास देश की आर्थिक मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी, तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञता मौजूद हैं, खासकर मॉरिशस में ईंधन वितरण के क्षेत्र में। रक्तदान करना यानी किसी की जान बचाने में योगदान देना। श्रीबेल फाउंडेशन आज बुबासा में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। ये आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय की ट्रांसफ्यूजन ब्लड सर्विस और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर रॉयल रोड से सैक्या मिल बुबासा एहतियामत के सामने आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 200 से ज्यादा पॉइंट खून एकत्र करना है। और विदेशी खबरों में, इटली और स्पेन में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। कुछ ही हफ्ते पहले यूरोप में भीषण गर्मी की लहर चल रही थी और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस दौरान जंगलों में आग भी लगी हुई थी। दोनों देशों में मौसम को लेकर तत्काल चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि यूरोप को अब और तेज तूफानों का सामना करने की तैयारी करनी पड़ रही है। अटलांटिक महासागर से आई एक डिप्रेशन के कारण उत्तरी और मध्य स्पेन के कुछ इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक गिर गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। कुवा डेलोरेट गली क्यूपिप में 97 साल की 97-year-old की श्रीमती दमवंती गोवर्धन, पैदाश नाम दामादाव सिंह और जो दमवंती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे देवेंद्रनाथ सिंह गोवर्धन के घर कुवा डेलोरेट गली क्यूपिप से उठाकर बिकाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Body Branch RM2 Radio Must See.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: छल्ला के लवदा फिरे हम भी इस वक्त के मुसाफिर हैं आज यहाँ है कल कहाँ होंगे क्या पता जिंदगी अपनी राहों पर हमें कहाँ से कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता लेकिन एक ख्वाहिश जरूर है जहाँ पर भी आप हो जिस हाल में भी हो बस खुश रहें हमेशा कुछ लोग सफर में मिलते हैं कुछ यादें बन जाते हैं और कुछ दिल में हमेशा रह जाते हैं तो आज के इस बॉलीवुड से सफर में एक बार दिल से कहिए कि आई एम हैप्पी यही हैक है हैप्पीनेस का तो वापस ड्राइव करते हैं विद अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर इट्स नाउ मनी फॉर यू टिल 2 PM
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती

0: रेडियो मस्ती।
1: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जैसी इकोलॉजी खा। इसे हमनी के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्ती जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमनी की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम आशर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।

0: Party Brunch RM2 Radio Masti.
1: हेरा फेरी का गाना नॉस्टैल्जिक मच मेरे लिसनर्स, कुछ गाने ना बस सुनते ही पुरानी मेमोरीज का पूरा हेरा फेरी शुरू कर देता है दिमाग में। वैसे ये गाना हमें मैसेज के जरिए भेजा है किसी अननोन पर्सन ने विद अ हैप्पी सैटरडे वाला विश। अरे नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपना नाम भी मैसेज में इंक्लूड करना ना भूल।

0: लें, हमें भी तो जानना है कि आप कौन हैं। सिर्फ गाना भेज के एनोनिमस फैन बन के नहीं बच सकते। इट्स योर बॉलीवुड शो विद नीलमणि। तो चलिए सैटरडे की मस्ती को जारी रखते हैं विद अनदर अमेजिंग गाना।
1: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

दो तारी तलवार यानी ऐसे जो बॉली बर्न विद एनमनी। चलिए और एक जबरदस्त गाना हो जाए आपके सैटरडे को मस्ती भरा बनाने के लिए। आरएम जो रेडियो मस्ती भर ही

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, प्लेफुल गाना आपको वाइब कराने के लिए। अभी मैसेजेस को चेक करते हैं। बिग हेलो चौबरी अलीश, जो सुबह से कनेक्टेड है RM2 रेडियो मस्ती के साथ। ललिता जी भी कनेक्टेड है और सलागे से गाना मांग रहे हैं अपने सारे दोस्तों के लिए। मनु, सीता, रीमा, साहिल, राहुल, पुरा ओदिशी, सोनिया एंड जितिन फैमिली के लिए। एंड नेक्स्ट मैसेज आया है गाना वो ओजस्वी, लविश, आशियन मम्मी के लिए। तो हो जाए आप सभी सुनने वालों के नाम एक प्यारा सा गाना, हे मिस्टर डीजे।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

गाने के साथ टाइम हो गया है पुमीन मनीर से बाय एंड फॉर हंसनी टू से हाय। यस, नेक्स्ट शो में हंसनी आने वाली है आपका साथ निभाने के लिए। सो मेक श्योर टू स्टे राइट हियर कनेक्टेड टू आरएमटी रेडियो मस्ती। एंजॉय योर सैटरडे।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Wishing you all a very good afternoon. When you check your time, it's the 2 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी के साथ. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार. मॉरिशस में पूरी तरह से मॉरिशस की स्वामित्व वाली पहली ईंधन वितरण कंपनी का आगमन हुआ है. फिलिन नाम के इस नए ब्रांड का स्वामित्व बंचन ग्रुप के पास है और ये उसकी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड के माध्यम से संचालित है. इसका आधिकारिक आरंभ कल शाम बोपलॉन स्थित लावेन्यू जु सुख में किया गया. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे. बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड ने नवंबर 2025 में 2.5 बिलियन रुपए से अधिक की राशि में एंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण किया था. आज सुबह से ही नेटवर्क के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर नए ब्रांड फिलिन के रंग और पहचान दिखाई देने लगी हैं. भंजन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया. प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने भंजन ग्रुप की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये स्थानीय समूह देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहा है. उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में पहली बार मॉरिशस के पास 100% मॉरिशन स्वामित्व वाला ईंधन वितरण नेटवर्क है. रक्तदान करना यानी किसी की जान बचाने में योगदान देना. श्री बेल फाउंडेशन आज

बुबासा में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही हैं। ये आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय की ट्रांसफ्यूजन ब्लड सर्विस और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर रॉयल रोड सैंकियामिल बुबासा एहतमाद के सामने आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 200 से ज्यादा पॉइंट खून एकत्र करना है। और विदेशी खबरों में ब्रिटेन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल का एलनीनो पिछले 100 से ज्यादा वर्षों में सबसे अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली रूप ले सकता है।

0: प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहने का अनुमान है, जो आधुनिक जलवायु रिकॉर्ड में अब तक का उच्चतम स्तर है। और इटली तथा स्पेन में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। कुछ ही हफ्ते पहले यूरोप में भीषण गर्मी की लहर चल रही थी और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस दौरान जंगलों में आग भी लगी हुई थी। दोनों देशों में मौसम को लेकर तत्काल चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. स्पेशल थैंक यू टू आवर लवली ओरिजिनल मली जो यहाँ पर थी फॉर बॉली ब्रंच. और अब टू सेट द मूड इन अ मैजिकल वे यहाँ पर पहुँच गई है आपके साथ जुड़ने के लिए हंसनी ऑन रेडियो मस्ती टिल 4 PM. सभी का वार्म वेलकम. आई विश यू ऑल अ वंडरफुल आफ्टरनून. और यहाँ पर बिल्कुल सेट हो गया है ये म्यूजिकल माहौल टू रीच यू आउट जहाँ पर भी साथ जारी हो गया है. इट्स अ प्लग एंड प्ले और ये जो म्यूजिकल सफर होने वाला है बस विल बी गेटिंग सम more time to relax, kuch aaram farmane ke liye, to get you in a musical mood, aur saath mein jo dedications rahenge, maybe kisi ko aap yaad karna chahenge, kisi ki yaad aa rahi hai already, missing your partner very much, so unhe ke liye ek message ho jaye, ya fir you want to celebrate your Saturday, 22nd of August, so we are here, lekar aapke messages, hum to dhoon lete hain wo bahana celebrate karne ke liye, aapke un khushiyon mein shamil hone ke liye. So we'll be waiting on a 549-1294 जहाँ पर बिल्कुल आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलने वाला है. That will be definitely via your messages. तो हमने सोचा है let us make it a bit more special. यहाँ पर जोकों को जो बिल्कुल तैयार ready हो गया है and थोड़ी देर के बाद हम लेकर आएंगे question भी. So I give you some time ताकि आप ready रहे to be part of the जोकों को. अगर आप कुछ busy हो तो थोड़ा सा वक्त आप निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक game जो होने वाला है जिसके लिए बिल्कुल आपकी जीत हो सकेगी to be part of the live concert जो होने वाला है 5th of September को. वो आएंगे यस उनकी आवाज़ जो हम बस पसंद करते हैं उनकी मदमस्त आवाज़ एंड ही इज शान. तो वहाँ पर जाना चाहेंगे टू बी पार्ट ऑफ हिज कंसर्ट तो उनका एक जोकों को यहाँ पर होने वाला है. तो आई गिव यू सम टाइम ताकि आप फ्री हो जाए एंड टू बी पार्ट ऑफ द जोकों को. राइट स्टे वेल कनेक्टेड. दिस इज आवर रेडियो मस्ती.
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय

0: सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकुम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ हा इमे नियम और शर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
1: सिकुम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
2: On veut faire un bon shopping à petit prix. Méga déstockage peut venir côté Platinum Plaza du 20 jusqu'à 31 août 2026. Top t-shirt, polo shirt à partir de 10 des 150 roupies. Pantalon et chemise pour monsieur et madame à partir de 10 500 roupies. Ban prix là extra, mais ban stock limité. Pas laisser l'occasion la passer. Platinum Plaza, Royal Road, poste de Flak. Téléphone 57 68 26 38.
3: RM2 Radio Musti.
4: Plug and play.
3: RM2
5: राइट माय लवली पीपल यहाँ पर बैक विद आज का प्लग एंड प्ले एंड जैसे हमने आपको इशारा तो दे दिया था कि यहाँ पर रेडी हो जाएगा आज का गेम शो आज का शकों को जहाँ पर गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu सो यहाँ पर म्यूजिक जो आपको ले जाने वाला है ऑन मैजिकल जर्नी जर्नी फील्ड ऑफ मेलोडीज कुछ प्यार भरी यादें और वो टाइमलेस आवाज जो शान की रहने वाली है शान यस वो तो आ रही है मॉरिशस और अब रेडियो मस्टी इज गिविंग यू द चांस ये मौका हम आपको दे रही है टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक और वो भी लाइव उनको देखेंगे उनको सुनेंगे धमाल करेंगे और क्या सो प्ले विद RM2 रेडियो मस्टी और यहाँ पर यू स्टैंड अ चांस जहाँ पर जीतने का ये चांस आपको दिए जा रही है यस टू विन वन VIP टिकट क्या बात है ये VIP टिकट आपको मिलना है सो ये जो गुड लक है हम आपको पहुंचाएंगे ये तो बिल्कुल टिकट आपको दिए जाएंगे टू बी पार्ट ऑफ द स्पेक्टेकुलर शान लाइव कंसर्ट एक आवाज एक वो स्टेज और एक वो यादगार रात ऑल दैट एट SBICC पाय ये जो बड़ा इवेंट है होने वाला है 5th of September को आज फ्रॉम 8 PM प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu तो यहाँ पर शान के बारे में जो भी हम कहेंगे कम हम कहेंगे क्योंकि इतना वर्सटाइल सिंगर वो तो है वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड प्लेबैक सिंगर रोमांटिक ऑलवेज स्माइलिंग फेस और उनका जो वॉइस है ना इट्स जस्ट लाइक सोलफुल एकदम सूदिंग वाला आवाज़ और जब भी हम उनको सुनते हैं तो बस हम अपने लेट नाइटीज़ को याद कर लेते हैं एकदम फैमिलियर आवाज़ इन बॉलीवुड जहां पर वो हमें देते हैं उनके सभी चाहने वालों के लिए रोमांटिक मेलोडिक एंड फील गुड वाले गाने राइट सो यहां पर शान के बारे में एक क्वेश्चन रिलेटेड टू शान यहां पर एक क्वेश्चन बिल्कुल हमने सेट किया है to be part of his concert. यहाँ पर जैसे आपने पता लगा लिया है कि जो ऑर्गेनाइजर है इट्स लाइक प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu सो हमने सोचा है लेट्स ब्रिंग अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस वेयर कैन यू बुक फ्लाइट्स थ्रू ticketbox.mu आपका क्वेश्चन ये है वेयर कैन यू बुक फ्लाइट्स थ्रू ticketbox.mu यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस हम देंगे ऑप्शन ए इट्स रोड्रिग्स आइलैंड ओनली Option 2, Rodrigues and Reunion Island only. And option C, you have destinations around the world. एक बार फिर से हम आपको options दे रहे हैं. Option A, Rodrigues Island only. Option B, Rodrigues and Reunion Island. And option C, destinations around the world. अगर आपके पास सही जवाब आ गया है, so why not try your luck? यहाँ पर lucky winner आप बन जाइए हमारे साथ on Radio Musti. Don't forget, आपके नाम, पूरे details like address, नाम ये सब please आप लिखिए on a 5491294 भेजिए ताकि आप इन हो जाए for yeah the lucky draw. तो चलिए हंसनी और पूरे टीम मिलकर आपको विश करती हैं all the best.
4: Plug and play.
3: RM2.
4: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. यस, वही तो जोश था. यहाँ पर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने आपसे पूछा है, व्हेन एक्चुअली इट्स वेयर वेयर कैन यू बुक फ्लाइट्स थ्रू ticketbox.mu. यहाँ पर तीन ऑप्शंस हमने आपको दिए. फर्स्ट वन दैट वाज ऑप्शन ए, रोड्रिग्स आइलैंड ओनली, ऑप्शन बी, रोड्रिग्स एंड वर्नन आइलैंड ओनली, एंड ऑप्शन सी, डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड. और सही जवाब इट्स ऑप्शन सी, डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड. और कई लोग ने इस गेम में भाग लिए है, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद. यहाँ पर आप अपने टाइम निकालते हो टू बी पार्ट ऑफ दर्शकों को टू बी पार्ट ऑफ रेडियो मस्ती, जो बहुत बड़ी बात है हम सब आज इसके लिए. सो लेट्स गेट बैक नाउ. यहाँ पे टाइम फॉर अस टू चेक आउट कौन है लकी विनर.

सही जवाब इट्स ऑप्शन सी और यहाँ पर जो जीतने वाला है वो तो हाइलैंड्स फिनिक्स के रहने वाले हैं और नाम है उनका वीरू गुमानी. कंग्रेचुलेशंस टू यू वीरू जी, आपकी जीत हो गई है. एंड यस बिल्कुल, यू आर द विनर नाउ और आप ले जा रहे हो 1 VIP टिकट टू बी पार्ट ऑफ द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कंसर्ट. वाह, ब्रावो टू यू, मेनी कंग्रेचुलेशंस. आप तो जा रहे हो टू बी पार्ट ऑफ द मैजिकल जर्नी जहां पर एकदम सुर वाले गाने हम सुनेंगे, मेलोडीज हम सुनेंगे, कुछ प्यार भरे मेमोरीज के साथ हम जो जाएंगे उनके टाइमलेस आवाज जो है फ्रॉम शान. तो रेडियो मस्ती ये चांस जो है बिल्कुल हमने आपको दिया है टू बी पार्ट, जहाँ पर वो एक आवाज़ को एंजॉय आप करने वाले हो उस लाजवाब मंच पर और वो यादगार रात. और क्या चाहिए टू मेक इट फन, एंड दैट विल बी ऑल एट SVICCPI. ये जो इवेंट है दैट विल बी ऑन 5th of September शुरू होगा फ्रॉम 8 PM. यहाँ पर शान की आवाज़ को सुनना किसको पसंद नहीं. शान उनका स्माइलिंग फेस आ जाता है सबसे पहले जब हम शान की बात कर लेते हैं, राइट. और हिंदी सिनेमा के बारे में बात करें तो शान हैज डिलीवर्ड सो मेनी यादगार हिट्स, चाहे हिंदी सिनेमा में हो या फिर उनके जो इंडियन पॉप म्यूजिक है उन के द्वारा एल्बम्स द्वारा उन्होंने दिए है कई मेमोरेबल हिट्स. स्पेशली वो लव ओलॉजी वाला गाना आपको पसंद है ना, आपको याद है. थोड़ी देर के बाद वी कैन प्ले इट फॉर यू ऑल ताकि जो मेमोरीज है वो फिर से वापस आ जाए. और लव ओलॉजी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स फ्रॉम शान जब हम अपने कॉलेज डेज को बस एंजॉय कर रहे थे, एकदम कूल वाले दिन, राइट. सो दिस गेम वॉज पावर्ड बाय टिकट बॉक्स डॉट एम यू. वंस अगेन वीरू गुमानी को मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस. उनके बारे में तो बस बहुत कुछ हमने कहा है, कहते रहेंगे. दिस इज रेडियो मस्ती, ऑलवेज ब्रिंग यू द बेस्ट. तो हमने सोचा उन्हीं की आवाज में एक रोमांटिक गाना हो जाए प्यार करने वालों के लिए. तो अभी आप अपने शोना को याद कर रही हैं, सो व्हाई नॉट ये हम चला दें आपके लिए, उनके लिए. दिस इज प्लग एंड प्ले ऑफ टिल 4 PM. हंसनी का साथ आप देते रहिए. विशिंग यू ऑल वंडरफुल टाइम.

0: plug and play.
1: RM2.
2: कुछ गाने ऐसे ही होते हैं एकदम लाइक सोलफुल सॉन्ग्स. तो यहाँ पर जुदाई के बारे में कुछ जिक्र किया गया है ना, जुदा होकर भी तुझसे जुदा ना हो पाए, तो यादों में रहा और हम तुझे भुला ना पाए. ऐसा ये कश्मकश है, पता नहीं क्यों लेकिन है. बहुत कुछ है जो दिल कहना चाहता है लेकिन दब जाता है दिल में. तेरे बिना ये जो दिन आते हैं, ये रातें आती हैं, सवाल करती हैं क्यों मोहब्बत करने वालों से जुदाई कर लेती हैं. यहाँ पर दिया और बाती की तरह ये जो आपका प्यार है, आपका प्यार सच्चा है और आपने बिल्कुल सही साथी को चुना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए हमने डेडिकेट किया है ताकि दिया और बाती की तरह ही आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, स्ट्रांग रहे. और दिया और बाती का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, राइट? एक बिना दूजे के अधूरा सारा नसारा है. तो बाती ने दिया से बस इतना कहा, तो रहे साथ तो हर अंधेरा भी कम है यहाँ, तो रहे साथ तो हर अंधेरा भी कम है यहाँ. और यहाँ पर साथ इतना प्यारा है कि तेरा साथ कुछ यूँ खास रहे, हर जन्म में तू ही मेरे पास रहे. दूरियाँ चाहे कितने भी आए दरमियाँ, मेरी हर धड़कन में तेरा एहसास रहे. सो मेनी रीजंस आज टू स्टे इन लव. और प्यार करने वालों के लिए ये स्पेशल पेशकश हम चलाते रहेंगे हमारे इस म्यूजिकल सफर में जो है हमारा और आपका प्लग एंड प्ले ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर है हंसनी आपके साथ और दिल से हम यही प्रार्थनाएं कर लेते हैं, पल पल करते हैं कि सच्चा प्यार अगर आपने किसी से किया है, दिल से आप निभा लीजिए, ये जुदाई का आलम कभी ना आए.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: A wonderful flow of music right on Radio Masti. Thank you for connecting with the Plug and Play. यहाँ पर है आपके साथ हंसनी और बिल्कुल ये जो म्यूजिकल सफर है हम तय करेंगे यूं ही प्यार के साथ हम सफर बन जाएंगे जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हो इस समय सफर करते समय प्लीज बी कॉशियस हैव अ सेफ ड्राइव और घर पर कुछ आराम फरमाते हुए दैट्स नाइस आपका वेलकम है इशारा है ठीक 3 बजे हम बढ़ेंगे समाचारों की और उसके बाद बिल्कुल कुछ और दिलचस्प गाने आपके इंतजार में है कहीं मत जाइए स्टे वेल कनेक्टेड

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Wish you all a very good afternoon. Check your time. It's dopahar ke theek 3 baje hai. Geeta ji se sunte hain sangshipt samachar. Aaiye unko sunte hain. Aapko namaskar.
7: Namaskar Hansini. Sabhi ko hamara namaskar. आज सुबह से भंजन ग्रुप के 37 फिलिंग स्टेशनों पर नया लोगो फिलिन दिखाई दे रहा है। ब्रांड की नई पहचान का अनावरण कल मापू स्थित लावोचो जिसको में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप ईंधन वितरण नेटवर्क का स्वामित्व रखने वाली पहली 100% मॉरिशन कंपनी है। इसने अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के माध्यम से नवंबर 2025 में इंडियन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया। आज रोजिल स्थित सर गायतों जिवाल स्टेडियम में फायर फाइटर्स डे के अवसर पर 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज द्वारा आयोजित एक समारोह में कई महानुभाव, दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी और सम्मानित दमकल कर्मियों के परिवारों की उपस्थिति में उनकी वर्षों की सेवा, समर्पण और अनुकरणीय आचरण को मान्यता दी गई। इस शनिवार 22 अगस्त से हरेक संचालक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़कर 100 हो जाएगी। ये उपाय इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड बोर्ड की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद द्वारा कल अनुमोदित नए प्रावधानों में शामिल हैं। संचालकों को इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड से परमिट प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी। ये प्रावधान इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड पिलग्रिमेज अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 में शामिल हैं। और विदेशी खबरों में चीन ने इस साल विदेशी पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से सहित तिब्बत की सबसे ऊंची चोटियों के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए हैं। चीन द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के कारण दुनिया भर के पर्वतारोहियों के अभियान और बुकिंग रद्द करनी पड़ी है। चीन द्वारा ये प्रतिबंध तिब्बत के शिगात्से के पास 52 सेकंड तक चले एक आतिशबाजी की घटना के बाद शुरू हुई जांच और विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को परमिट जारी कर

0: करने में हुई भ्रष्टाचार की जांच के बाद लगाया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, कुछ ही देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: पिछले समय बेलिया में 84 साल की 84-year-old की श्रीमती देवंती रतिया पैदाइश नाम हलकोरी और जो कृष्णावती से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 उनके बेटे राजा राम रतिया के घर पिछले समय बेलिया से उठाकर बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: RM2 Radio Musti.
1: Plug and play.
2: RM2
1: Plug and play.

Namaste. Definitely यहाँ पर रेडियो मस्ती इज हियर टू एंटरटेन यू. वी आर ऑलरेडी इन द सेकंड आवर. ये म्यूजिकल सफर जो बस जारी हम रखेंगे. बताओ हाउ जे हम सुनी एंड आई विल बी हियर. हम साथ रहेंगे, साथ कुछ बातें शेयर करेंगे और ये जो सफर है, ये जो म्यूजिकल जर्नी है, उनको थोड़ा सा और फ्रेशस बनाएंगे. और क्या, जब आप लोग साथ हो, आपकी दोस्ती है, आपका प्यार है, ये अपनापन है, तो और कहाँ जाएंगे. यही रहेंगे टू फील गुड, टू फील हैप्पी. और आप सभी का वेलकम इन आज का प्लग एंड प्ले. योर म्यूजिकल जर्नी अगर किसी को याद आप करना चाहेंगे सो बहुत ही ईजी है. जस्ट टू सेंड अ मैसेज ऑन 5491294. आपका इंतजार है. जल्दी से आप हमको याद करें.

0: plug and play.
1: RM2.
2: Back with the show. यहाँ पर टाइम अभी हो चला है to have some dedications. प्यार से जहाँ पर आपने कुछ भेजा है अपनों के लिए. So let us have this round for your messages. राकेश जी का साथ है. Hello, आपका welcome है और आप तो हो from

0: ब्राज़ील प्लीज मेरे लिए एक गाना हो जाए फॉर मी एंड फॉर माय लवली वाइफ सुनीता के लिए इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे आज जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं स्टे ब्लेस्ड और यहां पर गाना आप दोनों के लिए सूरज भाई का वेलकम है फ्रॉम अकैटबोन आई एम वर्किंग इन माय शॉप और आपके लिए जरूर एक गाना जो डेडिकेट करना चाहेंगे सो नाइस ऑफ यू थैंक यू और आपके लिए एंड आपके सभी कॉलिग्स के लिए जो आपके साथ आपके शॉप में है विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर एंजॉयिंग विद द ग्रेट ऑफ मस्ती यहाँ पे सरिता जी का साथ नमस्ते टू एवरीवन हैविंग माय चाय इट्स टी टाइम राइट और ऐसे खूबसूरत मौसम में लाजवाब गाने और क्या चाहिए आपके चाय को और भी स्पेशल टाइम बनाने के लिए ओहो क्या बात है यहाँ पर सभी रामदेनी परिवार के लिए यहाँ पर गाना चल जाएगा स्पेशली आपकी प्यारी सी बहन अरीना के लिए जो आपके साथ है दो बहनें एक साथ बैठे हुए गपशप कर रही हैं और साथ में एंजॉय कर रही हैं गरम गरम अदरक वाली चाय लेट्स मेक इट प्रेशियस गाइस जहाँ पर आपके अपने जो जाते हैं वहाँ पर जो लम्हे हैं वो कुछ और खास बन ही जाते हैं गुड आफ्टरनून दीदी हंसनी गुड आफ्टरनून टू यू टू कैसी हो मैं तो ठीक हूँ थैंक यू एंजॉयिंग रेडियो मस्ती एंजॉयिंग प्लग एंड प्ले यहाँ पर गाना है यलेश शाम के लिए जो सुखी नाम से इस समय स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है और आज आपके पास एक फरमाइश है बॉर्डर टू का एक गाना ये तो हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए टू मेक इट अ स्वीट डे तो अपनों को याद करें दिस इज योर शो जहाँ पर है हंसनी आपके साथ अप टिल 4 पीएम
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Let's bring it back. A special 90s हमारे सभी beautiful listeners के लिए जो 90s के fan follower हैं और बेशक ये जो souvenirs हैं will be definitely back. ये तो है the magic of our Radio Musti. Always bring you the best. जो हाल दिल का अभी वो कैसा है हाँ? जो हाल दिल का है वो लफ्जों में कहाँ आता है? तेरी याद आते ही ये दिल बस मुस्कुरा जाता है. जो हाल दिल का है वो किसी से कहा नहीं जाता. तेरे बिना अब ये दिल कहीं लगा नहीं जाता. सो ये दिल का हाल, ये दिल का चाल, ये बस हम आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रही हैं, स्पेशली फॉर बाबू शोना एंड परी के लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड एज ऑलवेज प्यार के इस महफिल में. दिस इज प्लग एंड प्ले जहाँ पर हम सुनिए आपके साथ जस्ट टू एंजॉय द म्यूजिकल शो अप टिल 4 PM.
3: जो हाल

0: are into
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: रेडियो मस्ती पर इट्स प्लग एंड प्ले. यहाँ पर ब्यूटीफुल कलेक्शन के साथ आपको एंटरटेन हम कर रहे हैं. ये म्यूजिकल सफर है आप लोगों के लिए फॉर आज का प्लग एंड प्ले. और ये जो खास गाना है विल डेडिकेट इट फॉर मिस्टर अविनाश हसराज के लिए. विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ गुड विशेज उनके लिए. हमेशा वो खुश रहे, स्वस्थ रहे और उनके लिए ढेर सारी बधाइयों को लेकर आ गई है उनके पूरे परिवार हसराज फैमिली की तरफ से. हम अविनाश हसराज को विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे. हेलो टू RMT team. Hello ji, welcome. Really hope you're so theek hai. Wishing a lovely weekend to everyone. Aaj aapki beti Arushi ka janmdin hai. Happy birthday to you, lovely beti. Wishes coming. Aapki taraf se jo hai mama Asha, bhaiya hai Arnav, wo aapki sab kuch hai. वो आपकी जान है, वो आपकी लाडली है. सो हारुषे बेटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू. ये खास गाना आपके लिए है मम्मा की तरफ से.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
1: Really hope you enjoyed the collection of आज का plug and play. That was a special one for all the lovers जो यहाँ पर connected है हमारे सभी listeners के लिए हमारे सभी गाने जो हम लेकर आए हैं प्यार के साथ हमने चलाया है. Really hope you enjoyed the musical show. अभी it's the end of plug and play. That will be a new beginning for आज का Bollywood टकटकाटक लेकर आ रही है दिव्या. Because the next show is from 4 p.m. मिलेंगे जल्द मिलेंगे कल. तब तक के लिए stay safe and I wish you a happy afternoon.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good afternoon, everyone. Check your time. Sham ke theek 4 baje hain. Aye sunte hain sangshipt samachar Tina ke saath. Aapko namaskar Tina.
6: नमस्कार संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें आज सुबह से बंजन ग्रुप के 37 फिलिंग स्टेशनों पर नया लोगो फिलिंग दिखाई दे रहा है ब्रांड की नई पहचान का अनावरण कल मापो स्थित लवांचो जिसुट में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया बंजन ग्रुप ईंधन वितरण नेटवर्क की पहली 100% मर्शन कंपनी है उसने अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑल टर्मिनल के माध्यम से नवंबर 2025 में इंजन पेट्रोलियम मर्शस का अधिग्रहण करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया और इस शनिवार 22 अगस्त से प्रत्येक संचालक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़कर 100 हो जाएगी ये उपाय इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड बोर्ड की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद द्वारा कल अनुमोदित नए प्रावधानों में शामिल है संचालकों को इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड से परमिट प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट भी जमा करनी होगी ये प्रावधान इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड पिलग्रिमेज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 में शामिल है आज रोजल स्थित सर गायतों जुवाल स्टेडियम में फायर फाइटर्स डे के अवसर पर 100 से अधिक दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज द्वारा आयोजित एक समारोह में कई महानुभावों दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी और सम्मानित दमकल कर्मियों के परिवारों की उपस्थिति में उनकी वर्षों की सेवा समर्पण और अनुकरणीय आचरण को मान्यता दी गई विदेश में ब्रिटेन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल का एल नीनो पिछले 100 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली रूप ले सकता है प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहने का अनुमान है जो आधुनिक जलवायु रिकॉर्ड में अब तक का उच्चतम स्तर है तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Music, Dr. Gutter.
4: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अब क्या ही कहे, somewhere up there is a someone who's waiting just for me, माहिया। ये तो हमें पता है कि वो आप लोग ही हैं, वो someone special जो हमेशा हमारे आने का इंतजार करते रहते हैं। तो लो जी, हम तो आ गए हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्यारी मुलाकात हमारे और आपके बीच में। शाम के 4:07 हो चुके हैं। कल अलग मूड के साथ आए थे, इट वॉज फ्राइडे इवनिंग, और हमने प्रॉमिस किया था कि आपके सैटरडे को भी हम धमाकेदार और मज़ेदार ज़रूर आएंगे विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। सो थैंक यू सो मच दिल से आपके मैसेजेस के लिए, क्योंकि यहां पर आने से पहले ही काफी मैसेजेस आ चुके हैं। सो वंस अगेन दिल से आपको शुक्रिया टू ऑल दोस जो जिन्होंने ऑलरेडी अपना मैसेजेस ड्रॉप इन कर लिया है, टू ऑल दोस जो अभी हम मैसेजेस भेजने वाले हैं। क्या है ना, हमेशा हम कहते हैं कि इस भाग दौड़ में हमेशा हम एक चीज याद रखते हैं, दैट इज काम का प्रेशर, काम का लोड और अपनों के लिए वक्त निकालना। और ऐसे में आप हमें अपना मानते हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा वक्त स्पेयर करके आप हमें याद करते हैं। इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। सो चलिए एक बार फिर से दिल से आपको शुक्रिया। ऐसे ही दिव्या का साथ देते रहिएगा। इट्स अ वंडरफुल सैटरडे आफ्टरनून। कहीं कहीं पर हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। आप क्या मौसम कैसा है ज़रूर जानना चाहते हैं, एंड आप कहीं पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेस्टोरों में फैमिली के साथ हैं या फिर शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं, जो भी सिचुएशन है, बस RM2 रेडियो मस्ती को चूज करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वी आर टुगेदर टिल 7 PM और साथ में आपके मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर विच इज 5499-1294।
0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: ऑफकोर्स इस गाने को कैसे भूल सकते हैं एंड आई गेस इस गाने से बहुत बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं एक ऐसे सिचुएशन के साथ जहां पर यू गॉट द चांस टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज फ्रॉम द 90s एरा और वैसे दैट वाज अमोंग शान्स फर्स्ट रिलीजेस एंड वैसे शान के बारे में बात करें तो डोंट फॉरगेट कि बहुत ही जल्द आप शान का एक कॉन्सर्ट असिस्ट कर पाएंगे यू विल बी गेटिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनके लाइव कॉन्सर्ट को असिस्ट करने के लिए ऑन 5th सितंबर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेविटी जीरो शान लाइव इन मॉरिशस एंड दे आर सेट टू बी अ स्पेक्टेक्युलर इवनिंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक एंड नॉस्टैल्जिया जो होने वाला है सैटरडे 5th सितंबर 2026 एट द एसबीआई सीसीपीआई एज फ्रॉम 8 PM सो डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस दिस वंडरफुल कॉन्सर्ट
0: Music,
1: Tuck Tuck Tuck. RM2, Radio Musti.

Well, this one's taken from the movie. प्यारे मोहन टू ऑल द प्यारीज एंड ऑल द प्यारीज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच. एंड चलिए ये गाना खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे ऐसे गानों को पसंद करते हैं. एंड इट्स गुड कि आप ऐसे गाने पसंद करते हैं एंड इट विल कीप यू वाइबिंग विद दिस सैटरडे आफ्टरनून. और हम तो चाहते हैं ही कि हमारे गीतों को सुनने के बाद थोड़ा बहुत आप भी डांस करें. भाई देखिए, डांस करने के लिए आपको वजह या फिर ओकेजन या फिर कोई स्पेशल मोमेंट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. लाइफ खुद एक सेलिब्रेशन है एंड इसको एंजॉय कीजिए अपनी तरीके से. वैसे गाना तो सुना ही होगा आपने, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. गाना आए या ना आए गाना चाहिए और उसी तरीके से आपको डांस आए.

Dabs in love with the game. I said no, why so?

0: 狗血。
1: Music Doctor Gata
2: RM2 Radio Musti.
3: क्या बात है, किसी ने आपका चैन वैन ले लिया है तो आप जरूर हमें बताइएगा। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस प्यार के मामले को हैंडल कर रहे हैं और किस तरीके से आप इसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रही हैं। वैसे प्यार के लिए तो लोगों के पास टाइम ही टाइम है और कभी भी ऐसा नहीं महसूस कराना चाहिए कि आपके पास टाइम ही नहीं है। क्या है ना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है या फिर उनको मनचाहा लड़का लड़की मिल जाती है तो उनको लगता है कि अभी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना है। बट इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बस प्यार की कमी ही है। एंड हम इसका एहसास आपको कराना चाहते हैं। आई जस्ट होप कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें एंड कीप गेटिंग द स्पार्क ऑफ लव, ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड चलिए यहाँ पर आप कहती हैं, हाय नमस्ते जी, आप कैसे हैं? जना आप हैं फ्लैग से। नेक्स्ट गाना गोज आउट जेनीता के लिए, बेटी जेनीता का बर्थडे है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू जेनीता, एंड विश इज़ कमिंग फ्रॉम आपकी बेटी है रीमा, जनीता, शेष्टा, अंशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिव सरन फैमिली ऑफ फ्लैक, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू। एंड यहाँ पर प्यारी सी ललिता जीतन जी कनेक्टेड हैं हमारे साथ, घर पर हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ, गर्मा गर्म पैनकेक भी आप खा रही हैं फैमिली के साथ, फुल ऑन वॉल्यूम आप हमारी गीतों को एंजॉय कर रही हैं ऑन RM2। सो नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड जीतन फैमिली के नाम। और साथ में यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर ईश्वरी जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली मुकेश साहब के लिए और आपके दो बेटों के नाम। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर।
1: म्यूजिक
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक चटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रहे हैं टुवर्ड्स द इंग्लिश फ्लैश न्यूज़ स्टेवाइड कनेक्टेड हमारी और आपकी मुलाकात इन द सेकंड आवर वंस अगेन. दिल्ली की सर्दी के बारे में तो पता नहीं लेकिन मॉरिशस में सर्दी इतना भी नहीं है. बट आपके यहाँ मौसम कैसा है? डू लेट अस नो ऑन 5499 1294. कहीं कहीं पर धूप है, हल्की बारिश है और जहाँ पर धूप है लोग इसका फायदा उठाकर बीच पे जा रही है समुंदर किनारे टू हैव सम ग्रेट फन टाइम. और आप क्या कुछ कर रही हैं? व्हाट आर यू अप टू दिस सैटरडे आफ्टरनून? हम जरूर जानना चाहते हैं.

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अगर तुम कहो भाई हम क्या कहें, कभी कभी लाइफ में बैठकर ये रियलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाइम्स कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं ज़िंदगी में जिसको समझना और समझाना किसी के बस की बात नहीं होती है, बस फ्लो में बहते चले जाना है। और हम यही चाहते हैं कि हमेशा आप हर एक सिचुएशन में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आई नो एट टाइम्स लाइफ गेट्स हार्ड एंड इट्स रियली नॉट ईजी कि हम अप्स एंड डाउन्स का सामना करते हैं, लेकिन आप रियलाइज़ करें अगर जिंदगी

0: में दुख नहीं आते तो हम सुख को इतना ट्रेजर कैसे करते, और जो हैप्पीनेस का वैल्यू है, जो वर्थ है, इसको कभी नहीं जान पाते, पहचान पाते, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए एक जैसा होता, बराबर होता, एंड हम कभी भी इसको वैल्यू नहीं करते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी ज़िंदगी में हम बस उठें और फिर से गिरें, फिर से खुद को संभालें, गैदर योर पीसेस, एंड बस ज़िंदगी यही है. तो चलिए, व्हाइल यू आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, तो हम यही चाहते हैं कि आपके स्ट्रगल में हम आपके साथ रहे. एंड ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये तो सबको पता है ही, लेकिन इस जंग में हम बिल्कुल आपके साथ हैं. 5:24, once again welcoming you in the second hour of your music tak tak tak, jahan par Divya ka saath hai on the waves of RM2 Radio Masti till 7 PM, and keep on sending your messages on 5499 1294.
1: Music tak tak tak, RM2 Radio Masti.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल दोस्तों, हर सैटरडे की तरह एकदम ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल टिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रिलेटेड टू फैशन। और आज हम आपसे बात करेंगे स्किन टोन के बारे में। एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हम डाल देते हैं या फिर कोई भी आउटफिट जो हमें पसंद है, लेकिन बस कलर व्हील को ध्यान में रखते हुए और आपके स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने कलर को चूज़ करना है। और जब हम स्किन टोन के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली आउटफिट्स बट इट कैन आल्सो बी योर मेकअप और लिपस्टिक कलर, ब्लश कलर या फिर जो आंखों में आई शैडो आप चूज़ करते हैं, ये सारा कुछ इट रियली रियली प्लेज़ अ वाइटल रोल। तो अगर आपका फेयर स्किन टोन है, आज हम बात करेंगे बस लिपस्टिक टोन के बारे में। अगर आप फेयर स्किन टोन हैं तो ऐसे में आपको चूज़ करना है न्यूड पिंक, ये एवरीडे वेयर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। या फिर आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर पीची न्यूड, रोज़ पिंक या फिर मूव पिंक, कोरल पिंक और चेरी पिंक। ये फेयर स्किन टोन में बहुत बहुत निखर के आता है। और अगर आपका मीडियम स्किन टोन है तो ऐसे में यू नीड टू यूज़ सम वार्म वर्सेटाइल एंड फ्लैटरिंग शेड्स लाइक रोज न्यूड, वार्म एंड ट्रेंडी टेराकोटा, पिंक बेरी, मूव रोज, ब्रिंक रेड और वार्म रेड भी आपके चेहरे पर निखर कर आ सकता है। और अभी हम बात कर रहे हैं डस्की स्किन टोन के बारे में। तो अगर आपका डस्की स्किन टोन है तो ऐसे में आपको हमेशा ऑप्ट करना चाहिए फॉर रिच बोल्ड एंड स्टेटमेंट शेड्स लाइक ब्राउन न्यूड, चॉकलेट ब्राउन, प्लम बेरी। और साथ में आप लाइट रेड का भी को ऑप्ट कर सकते हैं एंड ये निखर कर आपके स्किन टोन को और भी निखार सकता है। सो डेफिनेटली अपने स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए आप अपने आई शेडो, ब्लश, लिपस्टिक और स्पेशली अपने आउटफिट्स पर भी आपको पूरा पूरा ध्यान देना है।
0: म्यूजिक RM2 रेडियो मस्ती।

0: Music टकटकाता
1: RM2 Radio Musti।
2: चलिए 5:50 होने को है थोड़ी देर में एंड बढ़ते हैं आपकी कुछ मैसेजेस की ओर। यहाँ पर आप कहते हैं हेलो, विशिंग रियांच अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस फ्रॉम पापा उमेश, मामा नीलम, दादी अमृता, बहन है कियारा, चाची रीमा, चाचा सूरज एंड रोशन की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने भी सारे लोग आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रही हैं, आपको मेनी मेनी हैप्पी विशेस ऑफ द डे एंड स्पेशल हैप्पी बर्थडे टू मामू उत्तम फ्रॉम नील, लव यू मामू, स्टे ब्लेस्ड एंड टेल यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मामू जी एंड टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग द स्पेशल डे टुडे, आपको वंस अगेन बहुत बहुत सारा प्यार, बेस्ट विशेज। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर।
0: Music,
1: music,
0: tuk tuk tuk.
1: RM2, Radio Musti.

तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खेलना कोई संजोग नहीं है कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती हैं एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन द परफेक्ट टाइमिंग 5:54 ऑलरेडी

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बंजन ग्रुप ने 2.5 बिलियन रुपए से ज्यादा रकम में एंजन मॉरिशस की सारी गतिविधियां खरीद ली है। अब से एंजन मॉरिशस के बजाय कंपनी फिलिन के नाम से कार्यरत। प्रधानमंत्री के मुताबिक ईंधन का ये वितरण नेटवर्क 100% मॉरिशन है, जिससे अर्थनीति में उद्योगों के भरोसे की गवाही मिलती है। होम सुलह परियोजना के दूसरे चरण से अंगीत तक के 400 परिवारों ने उठाया लाभ। मौके पर मंत्री पत्रिका सेवादन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया। गुलामों की संपत्ति को याद करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय गुलामी संग्रहालय ने ट्रास इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण आम किया। इस बार महिला गुलामों पर जोर दिया गया। विदेश में टिकटॉक को चुकाना पड़ेगा $400 मिलियन। 13 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों की जानकारियां लेने के लिए। अब समाचार विस्तार से। फिलिन बंजन ग्रुप की नई कंपनी है। उसने 2.5 बिलियन रुपये से ज़्यादा रकम में एंजन मॉरिशस की सारी गतिविधियां और साइंटिस्ट फ्यूल स्टेशन खरीदे हैं। ग्रुप ईंधन को स्टॉक करने की परियोजना में 1 बिलियन रुपये निवेश करने का मकसद रखता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ईंधन का ये वितरण नेटवर्क 100% मॉरिशन है, जिसके जरिए मॉरिशन भारत और देश की अर्थनीति में उद्योगों के भरोसे की गवाही मिलती है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बेटामैक्स और मैरीटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल के मामलों पर भी बात की। ज्यादा जानकारी रजनी पीकर के साथ।
1: फिलिन ये पंजन ग्रुप की सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड का नया ट्रेडमार्क है। शनिवार की सुबह से पूर्व इंजन की 37 फिलिंग स्टेशनों के लिए नई पहचान। पंजन ग्रुप ने 2.5 बिलियन रुपए से अधिक की रकम के लिए इंजन द्वारा संचालित फिलिंग स्टेशनों को खरीदा है। इसके अलावा बंजन ग्रुप ने मॉरिशस में ईंधन भंडारण की राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के वास्ते भी के निवेश निर्धारित किए हैं। बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने कहा, मौजूदा इंजन के पहले ही 37 फिलिंग स्टेशन हैं। इसके साथ साथ स्टोरेज टैंक भी है। करीब 35,000 टन के स्टोरेज टैंक्स हैं, चाहे हवाई अड्डे में हो या बंदरगाह में। आज यहाँ टेक ओवर किया है तो देख रहे हैं कि ये काफी नहीं है, क्योंकि आज अगर मॉरिशस के सभी स्टोरेज टैंक को जोड़े तो केवल 4 सप्ताहों के लिए ऑटोनोमी है। ये काफी खतरनाक भी है, इसीलिए 5 अतिरिक्त टैंक्स में निवेश करने के बारे में सोच रही है, जो करीब 25,000 टन है, 1 बिलियन रुपए लगा रहे हैं। भोपाल स्थित लावांचा जिसिख में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम तथा व्यवसाय की दुनिया के अन्य कई महानुभावों की उपस्थिति में इस नए ट्रेडमार्क का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री के अनुसार ईंधन वितरण का ये पहला मॉरिशन नेटवर्क है, जो देश की अर्थव्यवस्था में मॉरिशन कंपनियों का विश्वास दोहराता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि अहम सेक्टर में एक प्रमुख उपलब्धि है। उन्होंने कहा,
2: Today's event marks the birth of the first fully Mauritian-owned fuel distribution network.
1: आज की गतिविधि पूर्ण रूप से मॉरिशन फ्यूल वितरण नेटवर्क का जन्म का प्रतीक है। ये काफी महत्वपूर्ण भी है। एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। मॉरिशन ठेकेदारों का विश्वास दर्शाता है, जैसे श्री बंजन को अपने देश पर है। ये दर्शाता है कि स्थानीय उद्योगों के पास न केवल महत्वाकांक्षा है बल्कि आर्थिक ताकत भी है, टेक्निकल विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के मैनेजरियल क्षमता में सफल निवेश करने की कटिबद्धता भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बेटामैक्स मामले पर भी बात की, जिसमें मॉरिशस की ओर भेजे जाने वाले पेट्रोल पदार्थ सप्लाई संबंधी कॉन्ट्रैक्ट के रद्द किए जाने के सिलसिले में सरकार को बंजन ग्रुप के लिए 2021 में 5 बिलियन रुपए से अधिक का निवेश करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2023 में मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल में करीब 30 बिलियन रुपए के पेट्रोल पदार्थ सप्लाई

0: के एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच का भी उल्लेख किया।
1: I cannot refrain from referring to the persecution of the Banjan group by the last government.
0: पिछली सरकार की तरफ से बंजन ग्रुप के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी चर्चा करना चाहेंगे। अक्सर उसे तंग किया जाता था, उसका अपमान किया जाता, उसके विरुद्ध कदम उठाए जाते। राजनीतिक बदले की भावना थी। पिछली सरकार संबंधी गैर जिम्मेदाराना हरकत से देश की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई और इसके परिणाम स्वरूप टैक्स चुकाने वालों को 5 बिलियन रुपये से ज्यादा बेतामक्स मामले के नुकसान के रूप में चुकाए गए। अब पूरी जनता मर्केंटाइल एनमारिज्म ग्रुप घोटाले को देख रही है। ये 30 बिलियन रुपए से ज्यादा की लागत के कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखता है।
1: The whole population is now witnessing the unfurling of the mercantile and maritime group scam relating to a contract of more than 30 billion rupees by the blatant manipulation of the tendering process.
0: इसके अलावा डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भारतीय सरकार को भी आभार प्रकट किया, जिसके साथ इसी सप्ताह मॉरिशस में ईंधन मुहैया कराने के लिए एक समझौता तय हुआ है। इस समारोह के दौरान संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। दो कलाकारों ने फिलिंग शीर्षक का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
2: और मंत्री पत्रिक कासियावदे ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया है। सीबी एनर्जी सभी रिन्यूएबल ऊर्जाओं की जिम्मेदार संचालन कंपनी होगी। मिसाल के तौर पर फोटोवोल्टाइक पैनल्स के आयात और स्थापना के लिए इसके जरिए होम सोलर प्रोजेक्ट को तेजी से चलाया जा सकेगा। मंत्री पत्रिक कासियावदे आज औंगेटा में थे, जहाँ 400 परिवारों को टूबी चरण से फायदा हुआ। इस परियोजना के लिए डीपी और दूसरे साझेदारों की मदद मिली है। ज्यादा जानकारी हम बाद के बुलेटिन में आपको देंगे। कल कांगो में आत्सू और एफसीसी के मिले जुले सहयोग से एक कार्रवाई चलाई गई और मुजफ्फर लाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल शक्की मुर्जिम से पूछताछ नहीं की जा रही है, क्योंकि वो क्लिनिक में भर्ती है। और इस पर ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: शुक्रवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मुख्यालय लाई गई ये गाड़ियां उसी जगह पर मौजूद थी जहां उसी दिन घोंघुब में मुजफ्फर लाल महमूद को गिरफ्तार किया गया था। मूस के नाम से जाने जाने वाले संदिग्ध इसी गाड़ी से उतर रहे थे, तभी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी के अंदर से अधिकारियों को कुछ मात्रा में गांजा और 45,000 रुपए नकद मिले। जिस अपार्टमेंट में वे रह रहे थे, वहां से कोकीन और मेथामफेटामाइन बरामद की गई। घर में मौजूद महेश सुजो नाम के एक व्यक्ति को भी इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसे आज वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। वहीं मुजफ्फर लाल महमूद को क्लिनिक से छुट्टी मिलने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा, जहां वे भर्ती हैं। 32 साल के संदिग्ध, जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया गया है, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की उस जांच के सिलसिले में तलाशे जा रहे थे, जिसमें कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। मुजफ्फर लाल महमूद का पहला भी कानून से सामना हो चुका है। पिछले मार्च में उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के सिलसिले में FCC ने गिरफ्तार किया था। ये मामला एक लग्जरी कार की खरीद से जुड़ा था। एक साल पहले भी उन्हें बड़ी मात्रा में नकद पैसों के साथ पकड़ा गया था, जिसमें कुछ रकम विदेशी मुद्रा में थी। जहां तक जब्त की गई 4 गाड़ियों का सवाल है, उनके खिलाफ संपत्ति वसूल करने की कार्रवाई की जा सकती है।
2: जैसे कि हम बता रहे थे, मंत्री पत्रिक कासियावदे ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया है। सीबी एनर्जी सभी रिन्यूएबल ऊर्जाओं की जिम्मेदार संचालन कंपनी होगी। मिसाल के तौर पर फोटोवोल्टाइक पैनल्स के आयात और स्थापना के लिए। इस पर ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: यहाँ औगेटा में NLSD परिसर के हर घर में पहले से ही अपने सौर पैनल लगे हुए हैं। हर घर में 416 पैनल्स लगाए गए हैं। इससे 400 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ये परिवार हर महीने अपने बिजली के बिल में 400 रुपए से ज्यादा की बचत कर सकेंगे।
4: Solar panel, elle est pas une économie pour nous-mêmes. Quand tu peux rester avant, bien tu peux venir bien cher, plus ou moins 1000 roupies. Tu peux bien difficile pour nous.
5: Le choix de l'électricité, c'est cher, 800, 900, tout dépend des foyers. Mais quand nous voulons la maison, on a une vigne ici. Et là, un grand chien pour ce qui est banal,

0: donc bénéficier même panneaux solaires dans la maison là-haut.
1: होम सोलर परियोजना के जरिए सीईबी लोगों को देश के ऊर्जा परिवर्तन में ज्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सीईबी के कार्यवाहक महानिदेशक संजय समन कहते हैं,
2: je suis pas juste un bénéficiaire d'un programme gouvernement, je suis aussi un acteur dans la transition énergétique du pays. Chaque fois, cette installation produit électricité grâce au soleil, je peux aussi aider pour diminuer notre dépendance de combustibles fossiles.
1: इस परियोजना को कई साझेदारों का सहयोग मिल रहा है, इनमें यूएनडीपी भी शामिल है जो इस परियोजना के लिए 30 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दे रहा है। इसकी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अलका भाटिया कहती हैं,
3: The solar panels that have been installed on your houses prove that the transition to renewable energy is not something out of reach and only for big institutions. It starts on our rooftops, in our communities, and in our everyday life.
1: सरकार हर साल 3,600 घरों में सोलर पैनल्स लगाने का लक्ष्य रखती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने सीबी की एक अलग कंपनी बनाने की घोषणा की है।
4: Nous pour créer une subsidiaire CIB qui pour consacrer 10 à l'énergie renouvelable. Ce travail, c'est mettre pas nous. Parce que dans les 5 ans, 6 ans à venir, Maurice Bizin au moins a 80 000 lacas inéquipés avec panneaux photovoltaïques. Là, nous en a 12 000 pour l'instant. Mon demande CB qui a partir quelques mois là, prend une mesure pour qu'il y ait un pot de panneaux lui-même.
1: होम सोलर प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2035 तक मॉरिशस के ऊर्जा मिशन में रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करने की देश की योजना का हिस्सा है।
5: गुलामों के व्यापार और संपत्ति को याद करने की अंतर्राष्ट्रीय दिवस के एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय गुलामी संग्रहालय ने ट्रांस इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण नाम किया। इस बार महिला गुलामों पर जोर दिया गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अरियाना मारी ने उल्लेख किया कि वो औरतें में बेनाम जरूर थी लेकिन कि वो औरतें बेनाम ज़रूर थी लेकिन उन्होंने ताकत दिखाई और उपनिवेशन के दौर में मजबूत ढाल की तरह अपनी छाप छोड़ दी है। 12 रबी उल अव्वल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर हसब दस्तूर जश्न किया जाता है। मुशस्मी खुदा के आखिरी नबी की मिलाद 40 से ज़्यादा सालों से सिद्दीकी नस्लों की वजह से और ख़ास है। हर साल की तरह मौलाना शाह अनस सिद्दीकी ईद मिलाद नबी के सिलसिले में आज सुबह मुशस तशरीफ़ लाएं, हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया।
6: सर शिव सागर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर मौलाना शाह अनस सिद्दीकी का खैर मकदम किया गया। मंत्री शकील मोहम्मद और कई दूसरे अहले दीन मौजूद थे। अपनी आमद पर उन्होंने फिर से मुर्शद जैसे छोटे जजीरे में यौमुन नबी के मनाए जाने पर खुशी जाहिर की। एक ऐसा जश्न जो अमन और सॉलिडारिटी से मनाया जाता है।
7: आज तकरीबन 22-23 वर्ष से मैं फ़कीर यहाँ पर हाजिर हो रहा हूँ ईद मिलाद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में आपके साथ शिरकत करने के लिए। आज हमारे यहाँ माशाल्लाह हल्का कादरिया इशात इस्लाम में जिस तरह से सुन्नी मदरसा बोर्ड में और जिस तरीके से काम हो रहा है, उस SNIT में काम हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है? टू सेव आवर जनरेशन, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को बेहतरीन तालीम तरबियत और उनकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए, ताकि हमारी नस्ल बच जाए। और अगर हमारी नस्ल बच गई तो यकीन करें हम अल्लाह ताला के यहाँ सुर्ख रू होंगे कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया। अगर हम अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके तो समझ लें आप कि हमने किसी चीज़ में कुछ नहीं किया। और माशाल्लाह काबिल मेरा पैगाम में मोहब्बत है। हुजूर का मिलाद मोहब्बत से मनाओ,

0: और खुशियाँ मनाओ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगियों में, दिलों में, घरों में खुशियाँ अता फरमाएगा।
1: मौलाना सिद्दीकी मंगल 25 अगस्त को फिनिक्स के अलीमिया कॉलेज में मिलादुन्नबी के खास मेहमान होंगे। वो अपने ठहराव के दौरान दीगर जगहों पर रूहानी प्रोग्राम करेंगे। सिद्दीकी खानदान पिछले 40 से ज़्यादा सालों से मुशरस्मी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आ रहा है और आप तीसरी नस्ल हैं।
2: आज शनिवार 22 अगस्त को रोज़ लकी सगाईतों जवाब स्टेडियम में 100 से ज़्यादा दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया। यह समारोह दमकल कर्मी दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। इस समारोह का आयोजन मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से किया गया था, जहां दमकल कर्मियों की कई सालों की सेवा, उनकी लगन और अच्छे आचरण के लिए उन्हें सम्मान दिया गया।
3: बेडाग वर्दी, एक शानदार ब्रेस बैंड और दमकल कर्मी एक ऐसे दिन के लिए एकत्र हुए जो उन्हें समर्पित था। 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को प्रेसिडेंट्स लॉन्ग सर्विस एंड गुड कंडक्ट मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही इस सम्मान के प्रथम और द्वितीय बार्स भी प्रदान किए गए। अशरफ मोहम्मद बक्सू कहते हैं,
4: आज मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 39 साल तक देश की सेवा की।
5: C'est pendant des longues années au service de la nation, au service de la communauté.
3: ये समारोह भावुकता से भी भरा था, विशेष रूप से दिवंगत दमकल कर्मियों के परिवारों के लिए जो उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। राजकुमार रामरिच्या की पत्नी प्रतिमा रामरिच्या कहती हैं, आज हमें गर्व है, उन्होंने देश की सेवा की। चाहे वे आज नहीं हैं, उन्हें याद किया गया, सम्मानित किया गया। ये उन लोगों के साहस और समर्पण को सलाम करने का अवसर था जो अक्सर आपात स्थितियों में जीवन की रक्षा के लिए आगे आते हैं। चीफ फायर ऑफिसर अशोक रामजान कहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी अफसरों में टीम स्पिरिट हो, अनुशासन हो और किसी भी आपात स्थिति में हम तैयार रहेंगे। इलाकाई प्रशासन मंत्री रंजीत उचित कहते हैं, उपकरण मूल ढांचों में निवेश कर रहे हैं, बजट बढ़ाया गया है। ये सिस्टम यहीं पर नहीं रुकेगी, सभी दमकल कर्मी इस सेवा और देश के विकास में योगदान देते हैं। वर्षों की सेवा, बलिदान और साहस, वे पुरुष और महिलाएं जो हर दिन दूसरों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं।
2: बेहतर रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग करना, आज सुबह मुफ्त में फिनिक्स में मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। ये पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अभियान के सिलसिले में ली गई, जिसका मकसद जनता को स्क्रीनिंग करने की और सेहतमंद रहने की हिम्मत देना है। देश के कमर्शियल सेंटरों में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाया जा सके और इलाज शुरू किया जाए, क्योंकि मॉरिशस में असंक्रामक बीमारियां सबसे खतरनाक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल है। विदेश में बच्चों की जानकारियों की रक्षा करने के लिए टिकटॉक को अमेरिकी सरकार को $400 मिलियन चुकाने पड़ेंगे। और ऐप और बाइटडांस ने 13 साल से कम उम्र वाली नाबालिगों की जानकारियां ली थी, जिसकी वजह से टिकटॉक पर मुकदमा चलाया गया। एल नीनो एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो पैसिफिक महासागर में समुद्री पानी के सामान्य से ज़्यादा गर्म होने के कारण होती है। इसका प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ता है। एल नीनो के दौरान समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवाओं और बारिश के पैटर्न में बदलाव आता है। कुछ देशों में बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर सूखा और गर्मी बढ़ सकती है। एल नीनो की वजह से अगला साल बहुत कुदरती आफतों के सिलसिले में रहेगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल के रहेंगे और रह कर वर्षा होगी, खासकर ऊंचे इलाकों पर। और

अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा, खासकर कल सुबह के दौरान। कल दोपहर बाद के समय पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल छाए रहेंगे और रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी, जो पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।

तो इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हम इम्बाओ चिन और लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचारों।

Petit chemin Bellermi, c'era si sale, chi ti fu io sol, chi smetti di ventire tia, smetti di ventire tia, pedascina malcori, oggi chi snauti namsi, zara gianni giati ti metti hoghi un kirti, kel subhasari nobbici, kel subhasari nobbici, un che betti shri raja rama retia, chi ker, petit chemin, bellia sil taker, in tim senscar kilie, quando maschi smashan pomidi giagi, commission tomorrow at 9:30 a.m. Renoir Street, Villenoir, 4 साल के 71 years old के श्री मोहन प्रसाद बुबुआना श्री मोहन प्रसाद बुबुआना जो देवाना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन की साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विक्रम बुबुआना के घर रेनोआ स्ट्रीट विलनोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानानियों की श्मशान भूमि ले जाएगी क्रमशन टुमरो एट हाफ पास्ट नून। काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मिनाजिया रोड काशी में काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मिनाजिया रोड काशी में 71 साल के 71 years old के श्री भास्कर प्रसाद देवीदिन श्री भास्कर प्रसाद देवीदिन जो देवीन महाराज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे मृत्यु हो गई उनके अर्थे कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे पंडित अरवेश शर्मा देवी दिन के घर काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मिनाजिया रोड काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालीन काशी की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमशन टुमरो एट हाफ पास्ट नून। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 63 years old की श्रीमती अमिता चितामन पैदाश नाम जरी और जो अमिता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री मानन चितामन की घर अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाघोश गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमिशन टुमरो एट 1 PM। स्वस्तिका स्ट्रीट पुथोदो हामलेट में 70 साल की 71 years old की श्रीमती गर्गी सिबारू पैदाशी नाम उज गोबी और जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री विद्यानंद सिबाहो के घर स्वस्तिका रोड पुथोदो हामलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए स्वीहांस पीटों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमशन टुमरो एट 1 PM। वैसे ये शोक समाचार हमने पढ़ ली है। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की श्रीमती रानी देसी सीबन जो आरती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी सोमवार 24 अगस्त को दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती चिंता सिपालक के घर केवल नगर बेलरीव

0: बस से उठाकर दफनाने के लिए त्वाइलू ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन ऑन मंडे 24 अगस्त एट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Music,
3: Dr. Gadak. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, भाई दोस्ती प्यार मोहब्बत ये सारी मैजिकल वर्ड्स हैं किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बेसिक नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम तो कहते हैं उन बेसिक नीड्स में प्यार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्यार से ज़िंदगी इतनी सवर जाती है कि क्या कहें। उतने ही प्यार से एक बार फिर से आप लोगों से मिलने आए हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 जहाँ पर दिव्या का साथ है। टिल 7 PM ऑफकोर्स चल रहा है आपका म्यूजिक टकटकाता। कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। चलिए यहाँ पर हम अगला गाना खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर अरशद एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम रेबेका। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। नमस्ते सिस्टर, प्लीज एड माय नेम मुबद्दक विदेशी जी। कोई भी गाना आपको सुनना है बिल्कुल बिल्कुल, ये अगला गाना और बाकी के सारे गाने आपके नाम और हमारे तमाम लिसनर्स के नाम भी।
0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक चटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सैटरडे इवनिंग है, कुछ लोग फ्राइडे इवनिंग की तरह पार्टी करना पसंद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, घर पर रहना है और कंफर्ट जोन में रहना है और दिस इज द बेस्ट। एक गरम चाय या फिर गरम कॉफी की प्याली और गर्मा गर्म डिनर, फैमिली के साथ हो रही चिट चैट, दिस इज द बेस्ट। तो चलिए टोल दोज जो घर पे रिलैक्स कर रहे हैं या फिर टोल दोज जो पार्टी करने के लिए निकल चुके हैं, ये गाना आप लोगों के नाम भी।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया।

0: यस, ये सवाल सबको खाया जा रहा है.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: हुआ तो हुआ पर कैसे हुआ? नमस्कार आदाब एंड ग्रान, वेलकम टू यू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक फैंस. मैं विकास रामधनी और हूँ आपके साथ रात के 9 तक. इट्स 7 टू 9 एवरी सैटरडे इवनिंग, 7 से 9 तक प्रोग्राम वही है झंकार बीट्स. नंबर भी वही है 5499-1294-5499. 1294 सीजन आज शुरू हो गया एंड इट्स रोड टू हेल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. सीजन के पहले मैच में ही हल सिटी ने द रेड डेविल्स को 2-0 से लुढ़काया. यही सवाल खाया जा रहा है कि हुआ तो हुआ पर कैसे हुआ, यानी हल ढूंढते ढूंढते हलचल सी मच गई मैनचेस्टर यूनाइटेड में. सो इट्स नॉट हैपनिंग अगेन. एक और सीजन क्या ऐसे ही जाएगा? ये तो पहला मैच था, पिक्चर अभी बाकी है. फिर भी हल सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट्स 2-0 for Hull and 0-0 for Manchester United. हल सिटी इन ड्रीमलैंड, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नाइटमेयर शुरू हुआ. एक बुरा सपना शुरू हो चुका है. इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 की घंटी बज गई है, सारे दरवाजे खिड़कियां खुल गई. बैंटर्स ऑन 5499-1294-5499-1294 पे आप भी अपना मैसेज भेज सकते हैं. और इस समय बता दें कि जो तीन मैच खेले जा रहे हैं, एक मैच तो समाप्त हो गया, हल सिटी 2-0 मैनचेस्टर यूनाइटेड. इस समय

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: सारे रास्ते सारी गलियां आज सुनसान पड़ी हुई है, दिल पे तन्हा है, पर नो वरी, मेरे साथ जुड़ जाइए और सुनते रहिए।

0: इस तन्हाई को दूर करने के लिए आज शाम आए हैं आपके लिए और लाए हैं झंकार बीट्स। Stay tuned to RM2 Radio Masti 7 to 9 every Saturday evening.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
2: RM2 Radio Masti.
0: तो इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 आरंभ हो चुका है कल रात से एंड शुक्रवार की रात पहला मैच पहली एंट्री और पहला धमाका चैंपियन टीम आर्सेनल एग्जैक्ट ओ रेंडेवू और उसने अपने पहले मैच में कोवेंट्री सिटी को न्यूली प्रमोटेड टीम कोवेंट्री सिटी को 3-0 से तोड़ा तीन या कितने हुए कितने आदमी थे अच्छा कितने गोल बने तीन गोल आर्सेनल 3 कोवेंट्री सिटी 0 इट्स ए कंफर्टेबल विन फॉर द गनर्स काई हैवर्ट्स बुकायो साका एंड मार्टिन ओडिगार्ड ऑन टारगेट और कह सकते हैं कि पहले से भी ज्यादा भूखे लग रहे हैं आर्सेनल के द गनर्स और इतने सारी खरीदारी उन्होंने की है इतने सारी शॉपिंग की है कि इन द एब्सेंस ऑफ पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो आज का जो मैच था उसको देखकर लगने लगा है कि शायद ही आर्सेनल के लिए कोई तगड़ा मुकाबला होगा अनलेस लिवरपूल के लाल जाग उठेंगे और कुछ अन्य खिलाड़ी मैदान पे उतरेंगे ब्रैडली बाकुला आदि आएंगे नहीं आएंगे मिंटे इट्स अबाउट ही इज अबाउट टू कम लिवरपूल में आने के की कगार पे हैं इन सब पर बात करेंगे आज रात 7 to 9 के बीच सो स्टे ट्यून टू RM2 और कल आर्सेनल की जीत हुई 3-0 से एंड दे आर हंग्रियर देन बिफोर विंगर जोलिस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा एंड कंफर्टेबल विन स्क्वाड आर्सेनल का हरा भरा है जबकि कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो टॉप खिलाड़ी लाइक द लाइक्स ऑफ विक्टर ग्योकरेस और नए खिलाड़ी गिमारेस भी कल खेल नहीं पाया सो दे हैव सच ए बिग स्क्वाड एंड ह्यूज सो कोवेंट्री वाज आउटप्लेड एंड आउटक्लास्ड क्योंकि सामने था आर्सेनल जो प्रीमियर लीग का चैंपियन टीम है और फ्रैंक लैम्पर्ड जो नया कोच है फॉर कोवेंट्री सिटी आफ्टर 25 इयर्स दे कुड कम बैक पर ऐसा कुछ नहीं हुआ सो हैट्स ऑफ टू आर्सेनल एंड उसके कोच को एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट मैचेस आज रात इस समय कहीं एक और गोल बना है इट्स एवर्टन 2 क्रिस्टल पैलेस 0 और ये दूसरा गोल चियानो बैरी की ओर से रहा एवर्टन 2 क्रिस्टल पैलेस 0
1: झंकार

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: मोर गुड न्यूज़ कमिंग. प्रीमियर लीग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे खुशी की बात है और गुड न्यूज़ की हमारी अपनी चैंपियन साइकिलिंग की चैंपियन किम्बर्ली लेकुडेपिना अभी भी ग्रीन जर्सी पहनी हुई है. आज का जो चौथा चरण था उसमें उसने तीसरा स्थान लिया. सो हैट्स ऑफ टू किम्बर्ली लेकुडेपिना जो इस समय ग्रेट ब्रिटेन टू ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में हलचल मचा रही है. अनलाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, हल सिटी ने हलचल मचाई और इधर किम्बर्ली अभी भी क्लास मोशिनेगाल में जनरल क्लासिफिकेशन में पहले स्थान पर है. सो आज उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया और अभी भी इस चौथे चरण के बाद वो लोरेना वीबीज वाइब्स के साथ के पीछे आई और उसका पहला स्थान अभी तक बरकरार है. 24 सेकंड आगे हैं लियन लाइपर्ट से 24 सेकंड और कल फाइनल चरण फाइनल स्टेज जो 123.8 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा और कल दिन के दौरान मॉरिशन समय अनुसार दिन के 2 बजे ये आखिरी रेस शुरू होगी. सो हैट्स ऑफ टू किम्बर्ली लेकुडेपिना. इन पर बात करते रहेंगे. फिलहाल आपके जो मैसेज हैं 5499-1294 5499-1294 पे वी हैव आपको भी आई फील सॉरी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कह रही है शालिनी एंड अपने especially for your husband Yash, who is a huge die-hard fan of Manchester United. नहीं उम्मीद की किरण अभी बाकी है, इसी पर तो दुनिया कायम है और कायल भी है. सो गुड लक टू ऑल लिवरपूल फैंस कह रही है शालिनी. लाइक माई डैड मिस्टर जीवन एटवारिया ऑफ फोंजीसाक. आपकी बेटी है मोहिशा ऑफ ग्रेड 8 ऑफ गायता रिनाल स्टेट कॉलेज. एंड आपके लिए शालिनी थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए और चुनने के लिए. सो इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन बाकी जो है अभी समय कुछ और मैच खेले जा रहे हैं. एवर्टन लीडिंग बाय 2-0. इट्स अनदर मर्सीसाइड टीम और कल लिवरपूल खेलेगा अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड. गुड इवनिंग आपको भी, नमस्कार. आप है यलेश सूरीनाम से और आपकी पूरी फैमिली सभी दोस्तों के लिए आप ये अगला गीत डेडिकेट करना

0: जाती है. एंड वी हैव अनदर मैसेज कमिंग फ्रॉम ऋषि. लाइफ एंजॉयिंग ग्रेट होना भी चाहिए एवरी सेकंड विद फैमिली मेंबर्स एंड दिस इज द बेस्ट थिंग क्योंकि फैमिली इज एवरीथिंग. जो अभी और 7 दिनों में राखी मनाई जाएगी, रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाएगा, सो सबको भाई बहनों को सभी प्यार करने वालों को ये बंधन मुबारक हो. बहुत बहुत शुभकामनाएं. सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ईच एंड एवरी वन. आपके मूडी फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड को भी हैप्पी रक्षाबंधन आप कह रहे हैं. हेलो आपको भी. वी हैव अनदर मैसेज ऑन 5499124549914 पे आप भी अपना मैसेज भेज सकते हैं. और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए भी एक दो थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा मैसेज आप भी भेज सकते हैं उनके लिए भी.
1: RM2 Radio Musti. Hit music only.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: सबसे पहले अपडेट लेटेस्ट रिजल्ट इंग्लैंड की प्रीमियर लीग की शुरुआत कल हुई आर्सेनल ने कोवेंट्री सिटी को 3-0 से तोड़ा कोवेंट्री सिटी जो 25 साल बाद वापस आई और तीन गोल खाकर अभी भी है जिंदा है पर शर्मिंदा भी नहीं है पहला मैच 25 साल बाद वापस लौटना प्रीमियर लीग में बहुत बड़ी बात है और आज हल सिटी ने 9

0: साल बाद फिर से कदम रखा प्रीमियर लीग में और हल ढूंढ निकाला अपने खुद का हल और मैनचेस्टर यूनाइटेड को भेजा हेल में 2-0 हल सिटी 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 और खबरों के मुताबिक आज मार्कस राशफोर्ड को भी खेलने का मौका दिया गया सेकंड हाफ में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 से पिछड़ रही थी फिर भी राशफोर्ड अपने नंबर 9 जर्सी पहनकर आया दो साल पहले इसी जर्सी के साथ वो खेल पाया था और वापस लौटा लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया एंड डिफेंस गड़बड़ा गया है माइकल कैरिक कोच कैरिक को फिर से संभालना पड़ेगा और संभल कर खेलना पड़ेगा एल्स अन्यथा पूरा सीजन जो है नेक्स्ट ईयर होता जाएगा सो इट्स 5499-1294-549-9912-94 एक मैसेज है स्पेशल डेडिकेशन आपके दोस्त साहिल के लिए फ्रॉम जानवी on 5499-1294. So it's Everton 2, Crystal Palace 0, Ipswich Town 1, Sunderland 1, or Nottingham Forest 0, Leeds United 0. आज रात 8:30 Brentford का मुकाबला Tottenham Hotspur से. लगे हाथ आपको हम कल के fixtures भी आपको दे ही देते हैं. कल शाम 5:00 दो मैच खेले जाएंगे. सबसे पहले Brighton versus Aston Villa और Manchester City with Enzo Maresca खेलेगी अपने इतिहाद में Bournemouth के विरुद्ध Man City versus Bournemouth Pep Guardiola नहीं है इसलिए the race is wide open Arsenal इसको और मजबूत करना चाहता है Arsenal अभी भी hungrier than ever so City versus Bournemouth कल शाम 5:00 और कल रात 7:30 Newcastle United versus Liverpool St. James's Park में ये मैच खेला जाएगा so Liverpool के लाल तैयारी में है उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है क्योंकि खिलाड़ियों का नाम बस लिया जा रहा है खासतौर पे Bradley Bakula अभी भी the main target is Bakula हालांकि उसके साथ इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर एक समझौता हो गया है लेकिन क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ना बाकुला को और ना ही इब्राहिम एम्बाई को जाने देना चाहता है सो दे आर आस्किंग फॉर एटलीस्ट 140 मिलियन यूरो या पाउंड फॉर ब्रैडली बाकुला जो काफी कठिन है सो बात करेंगे एंड आवर मॉरिशियन चैंपियन किम्बर्ली लिकू डेपिना अभी तक पहले स्थान पर है लीड कर रही है और लीडर है इंग्लैंड के टू ऑफ ब्रिटेन में लीडर है और ऐसे लीडर जो नीडर है
1: Golden hit of the hour. Evergreen songs.
2: Radio Musti.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: अपडेट यह है कि लीड्स यूनाइटेड नाउ लीडिंग बाय 1-0 अगेंस्ट नॉटिंगम फॉरेस्ट. खेल के 88वें 88 मिनट पर गोल कर्तेसी ऑफ एंटन स्टैक फॉर लीड्स यूनाइटेड. और ये खेल का 90th मिनट बीइंग प्लेड, यानी अब केवल इंजरी टाइम है. और लीड्स लीडिंग बाय 1-0 नॉटिंगम फॉरेस्ट के मैदान पे. इप्सविच टाउन 1, सन्डरलैंड 1, एवर्टन 2, क्रिस्टल पैलेस 0. और आज का जो पहला मैच था, पहला अर्ली किक ऑफ, उसमें अर्ली झटका लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, विद हल सिटी बीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय 2-0. हल सिटी के लिए सेमी अजाई का गोल खेल के 17वें मिनट पर. सॉलिड रॉक डिफेंस में सेमी अजाई ने पहला गोल स्कोर किया. और एक और डिफेंडर नोबेल मेंडी का दूसरा गोल खेल के 38वें मिनट पर. 38 मिनट पर आज रात डू वी हैव अनदर गोल? हाँ, अभी अभी ब्रेकिंग. इप्सविच टाउन नाउ लीडिंग बाय 2-1 अगेंस्ट सन्डरलैंड. सो आज रात 8:30 बजे ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला टोटेनहम हॉटस्पर से. और हॉट खबर यह है कि टोटेनहम हॉटस्पर हैव अग्रीड a deal to sign Sabinho for an initial £75 million. £75 million mein wo Manchester City ko chhod kar Tottenham Hotspur mein ja raha hai, according to boss Enzo Maresca. Yani Maresca bhi abhi kafi asamanjas mein hai. Abhi abhi uski haar hui Arsenal ke virudh the FA committee shield mein. Aur Pep Guardiola to hai hi nahi. Phir Rodri bhi chala gaya hai Real Madrid mein. Madrid mein gaya hai ya phir बार्सिलोना में किया है, ला लीगा चैंपियन बार्सिलोना में. एंड नाउ सबिनियो भी छोड़कर जा रहा है. £75 million, क्वाइट ह्यूज सम. और टोटेनहम हॉटस्पर उसका पुराना दीवाना रह चुका है. पिछले सीजन से सबिनियो को वो लाना चाहते लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो टोटेनहम हॉटस्पर ने काफ़ी खर्च किए हैं, अराउंड 185 million pounds. उसने मैथ्यूस फर्नांडेस को खरीदा वेस्ट हैम यूनाइटेड से. फिर सैंड्रो टोनाली को £100 million में from Newcastle United. And therefore head coach De Zerbi is looking to strengthen his side attack bhi. Aur khabar ye hai ki City ka Savinho ka teammate Omar Marmoush bhi shayad Tottenham Hotspur mein aa sakta

0: हैं। सो आज रात टोटनहम हॉटस्पर एवे जाएगी ब्रेंटफोर्ड के मैदान में और मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हुई। बता दें कि आज ही दिन के दौरान ये खबर आई कि यूनाइटेड हैव अग्रीड अ फी अप टू 70 million pounds, 70 million pounds में ब्राइटन का मिडफील्डर कार्लोस बालेबा आ गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। कैमरून का ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है एंड केवल 22 साल का है उसका। वो अपना मेडिकल पूरा करने आएगा वीकेंड के दौरान, कल तक हो जाना चाहिए ओल्ड ट्राफोर्ड में। सो अनदर प्लेयर और एक खिलाड़ी आ गया है 70 million pounds में मैनचेस्टर यूनाइटेड में, कार्लोस बालेबा। और लेकिन हारने से बचा नहीं पाया, कहें कि वो अगले सप्ताह ही वो खेल पाएगा। सो इट्स हैपनिंग ऑन 4549912945499124 पे एंड अलॉन्ग विद इंग्लिश प्रीमियर लीग। कल से स्पेन का ला लीगा भी शुरू हो गया। कल बेटिस की जीत हुई 1-0 से। इस समय हाफ टाइम रिजल्ट एथलेटिक 0 सेविलिया 1, गोल कर्टेसी ऑफ उसु फॉर सेविलिया। और रात के 10:30 बजे 11:30 बजे रियल मैड्रिड अपना पहला मैच खेलेगी एस्पान्योल के मैदान पे।
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स।
0: ढोल बजने लगा है, प्रीमियर लीग सीजन शुरू हो चुका, ढिंढोरा भी बजाते रहिए।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: कोई बात नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गया आज अपना पहला मैच 2-0 से अगेंस्ट हल सिटी। एक माइकल कैरिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि द टीम इज़ नॉट रेडी, और सर झुकाकर नहीं होना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, हौसला रखो, आगे बढ़ो, हर चुनौती से लड़ो। सुर भी होंगे, खेल भी होगा, आज का सफ़र कमाल का होगा। और बता दें कि टोटेनहम हॉटस्पर आज रात 8:30 बजे जाएगा ब्रेंटफोर्ड के मैदान पे, एंड वी हैव द टीम लाइन अप फॉर टोटेनहम हॉटस्पर। रॉबर्टसन इज प्लेइंग, रिचार्लिसन, मार्कोस सेनेसी, गैलागेर, सैंड्रो टोनाली, यान पोल वन हेक, किंस्की, टेल, ग्रे, बेगवाल और मू फर्स्ट टीम है एंड सब्स्टिट्यूट के रूप में दुब्रावका। इनका स्क्वाड देखिए कितना हरा भरा है, बेन डेविस, मैडिसन, सोलांके, बेंटानकू, डांसो, उडोजी, मैथ्यूस फर्नांडेज, लुका विलियम्स, बानेट सब के सब खेलने के लिए तैयार हैं। और रॉबर्टो डी ज़ेर्बी आज एक अपने नए स्क्वाड के साथ, नए जोश के साथ मैदान पे उतरेगा। सो ब्रेंटफोर्ड वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर रात के 8:30 बजे। और बता दें आपको कि फुल टाइम रिजल्ट, आज एवर्टन ने अपना पहला मैच जीत लिया अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन 2 क्रिस्टल पैलेस 0। फुल टाइम रिजल्ट, इप्स्विच टाउन ने फाइनली सन्डरलैंड को 2-1 से परास्त किया और लीड्स यूनाइटेड की जीत हुई 1-0 से नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैदान पे। दिस और फुल टाइम रिजल्ट्स रात 8:30 बजे ब्रेंटफोर्ड वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर। कल बाकी सभी मैच खेले जाएंगे। और अभी हाफ टाइम रिजल्ट, स्पेन के लालिका में सेविलिया लीडिंग बाय 1-0 अगेंस्ट एथलेटिक रात 11:30 बजे। रियल मैड्रिड एवज

0: जाएगी स्पैनियल बार्सिलोना के मैदान पे और इटली के सीरिया में चैंपियन टीम इंटर मिलान आज खेलेगी मोंजा के विरुद्ध रात 8:30 बजे ये मैच भी शुरू होगा। बता दें कि कर्टिस जोन्स चला गया है इंटर मिलान में 35 मिलियन यूरो में, सो लिवरपूल का मिडफील्ड भी अब थोड़ा लड़खड़ाने लगा है, सो दे नीड टू बाय। अंदोनी इराउला क्या करेगा, इंतजार तो है ब्रैडले बाकुला का, ऑल आईज ऑन ब्रैडले बाकुला, लेकिन बता दें कि 1 सितंबर की रात ये ट्रांसफर बाजार बंद हो जाएगा, इसलिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए।
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.

आज रात ताना नहीं मारेंगे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, पूरा सीजन बचा हुआ है और वैसे भी जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं चलाया करते।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: रात के 8:18 और 50 सेकंड हुए हैं. यू आर ट्यून टू रेडियो मस्ती RM2 और मैं हूं विकास. वो आपके साथ रात के 9 तक. एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन, नया सीजन आरंभ हो चुका है. कल आर्सेनल की जीत हुई 3-0 से. आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हुई 2-0 से अगेंस्ट हॉल सिटी. ये बड़ा झटका है, झटके पे झटका लगता आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को. लेकिन इट्स द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन. अभी पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ होना, देखना, करना, झेलना बाकी है. सो एवर्टन की आज जीत हुई 2-0 से अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. इप्स्विच टाउन 2, सन्डरलैंड 1, नॉटिंघम फॉरेस्ट 0, लीड्स 1. अभी से कुछ ही मिनट बाद 8:30 ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला टोटेनहम हॉटस्पर से. और टोटेनहम की बात हुई तो कई सारे खिलाड़ियों को वो साइन कर रहा है. और साइनिंग की बात हुई तो एस्टन विला क्लोज टू साइनिंग जर्मनी इंटरनेशनल लियोन गोरेट्स्का ऑन ए फ्री ट्रांसफर. खबर ये है कि उनाई एमरी जो है कोच, उसने डायरेक्टली बात की लियोन गोरेट्स्का से, जो 31 साल का है, 31 ईयर ओल्ड, और बायर्न म्यूनिख को वो अलविदा कह चुका है. ही इज अवेलेबल ऑफ द लीविंग बायर्न म्यूनिख इन द समर. एंड एस्टन विला हैव हेल्ड पॉजिटिव टॉक्स विद 31 ईयर ओल्ड. गोरेट्स्का आने वाला है एस्टन विला में. एंड उनाई एमरी को अपना मिडफील्ड को, अपने मिडफील्ड कोच को उसे बूस्ट करना था. एंड आई थिंक दे हैड बीन चेसिंग गोरेट्स्का को और उसके फॉर्मर टीममेट रुआओ पालिन्या को भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो लियोन गोरेट्स्का कमिंग टू एस्टन विला, जो कल खेलेगा ब्राइटन के विरुद्ध कल शाम 5:00. कल ही मैन सिटी वर्सेस बोर्नमुथ और कल रात 7:30 न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला लिवरपूल से है. गोल बनते जा रहे हैं स्पेन के लालिगा में. अब एथलेटिक 0 सिविलिया 3. रात 11:30 रियल मैड्रिड एवे जाएगी स्पैनियोल के मैदान पे. और आज इटली के का सीरिया भी आरंभ हो रहा है विद इंटर मिलान चैंपियन टीम टेकिंग ओवर मोन्जा. ये मैच आज 8:30 आरंभ हो रहा है. नापोली खेलेगी जेनोवा के विरुद्ध. फ्रांस के लीग एम भी कल पहला मैच आरंभ हुआ. मासे की जीत हुई 4-0 से. कल ओलंपिक दे मासे ने अपने विलोद्रोम में हराया. 4-0 से उसकी जीत हुई. इस समय रेसिंग क्लब दे लांस 1-0 से आगे है अगेंस्ट ओसेया. फ्लोरियन टूवे ऑन टारगेट पेनाल्टी पर. और क्रिस्ट मालोसो को रेड कार्ड भी मिला है ओसेया की ओर से. और कल पेरिस सेंट जर्मेन चैंपियन टीम खेलेगी अपना पहला मैच. इतना सब कुछ फुटबॉल को लेकर. हैट्स ऑफ टू आवर ओन साइकिलिंग चैंपियन. ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर किम्बल लिकू डेपिना, जिसने कल तीसरे स्टेज में जीत हासिल की. पहले पोजीशन पर आई, 31 सेकंड आगे निकल आई वो. अपने 13 सेकंड आगे पूरा किया कल का ये रेस. और आज जो चौथा और पेनल्टीमेट पूर्वांतिम रेस थी, चौथी रेस थी, उसमें उसने

0: तीसरा स्थान लिया। फिर भी किम्बल एलेकू पिना ने अपना लीडर की जर्सी पहने रखी है और कल जब आखिरी रेस लगेगी, कल आखिरी रेस लगने वाली है और उसमें भी वो लीडर के रूप में ये रेस शुरू करेगी। कल की जो रेस है वो मॉरिशन समय अनुसार कल दिन के 2 बजे ये रेस आरंभ होगी। 123.8 किलोमीटर का ये रास्ता होगा। फिलहाल वो जनरल क्लासिफिकेशन में लेकू बियोपिना पहले स्थान पर है, 24 सेकंड आगे है लियान लीपर्ट से। 24 सेकंड काफी होते हैं ये। एंड सब कुछ ठीक चला तो कल चैंपियन बन जाएगी हमारी अपनी मॉरिशन साइक्लिस्ट मॉरिशन चैंपियन किम्बले लेकू पिना को हार्दिक बधाई।
1: झलकार बीट्स RM2 रेडियो मस्ती
2: झलकार बीट्स।

0: और झुमका।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
3: पे आप भी जुड़ गए हैं और चुनने के लिए और जुड़ने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। नमस्ते आपको भी। ये है बेटी का मैसेज फ्रॉम पिछे गाफे। हाय बेटी, लॉन्ग टाइम आपकी आपका मैसेज आ रहा है, थैंक यू। और कह रहे हैं कि जस्ट जॉइनिंग द प्रोग्राम, सीम्स द वेदर इज वेरी हॉट एट रेडियो मस्ती। हाँ, हॉट हॉट है आज। प्रीमियर लीग सीजन जो आरंभ जो हुआ है और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हो गई 2-0 से। पर होता है, हार के बाद जीत आती है और हार और जीत तो कहीं गाड़ी के दो पहिए के समान होती है, कभी हार कभी जीत। लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, बस वो जोश चाहिए, वो जुनून चाहिए, है ना। सो आप कह रहे हैं कि डेडिकेटिंग नेक्स्ट सॉन्ग टू योर किड्स, आपके बच्चों के लिए। सन्स आपके बेटे हैं हर्षवीर और रणवीर, और आपकी बेटी परमिता के लिए ये अगला गीत जाता है। एंड थैंक यू। और टॉप सॉन्ग सिलेक्शन, टॉप मैसेज ऑन 5499-1294। और साथ में मैसेज की बात हुई तो बता दे कि आज इट्स ए हैप्पी बर्थडे, स्पेशल हैप्पी बर्थडे, विशिंग ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू शानिया। हाय शानिया, बोन एनिवर्सरी, जो इस समय रेनन टापू में है अपनी मम्मी सुरेखा के साथ, पापा जमाक और प्यारी बहना करिश्मा के साथ। बधाइयाँ, और आप सेलिब्रेट कर रही हैं, सो हैप्पी बर्थडे, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड शानिया। भाई अक्षय, अभिषेक, केशव, आरव, नेहा, वरुणा, शुभम, मामू मामी, सभी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, सबकी ओर से विशिंग शानिया ए वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: RM2 Radio Musti.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: मैच शुरू हो चुका है, ब्रेंटफोर्ड 0 टोटनहम हॉटस्पर 0। खेल का ये 8वां मिनट है और इंटर मिलान ऑलरेडी लीडिंग बाय 1-0 अगेंस्ट मोन्जा। खेल का ये 7वां मिनट है। हकान कानहानोग्लू ऑन टारगेट फॉर इंटर मिलान। चैंपियन टीम है, चैंपियन की तरह खेल रही है, अनलाइक सम अदर टीम्स जो आज पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई। उडिनेज़े 0 कोमो 0। आज रात जेनोवा का मुकाबला नापोली से, पामा वर्सेस कागलियारी। इंटर मिलान की जीत हो रही है 1-0 से। इटली का सीरिया भी आज ही आरंभ हुआ। कल फ्रांस का लीग भी शुरू हुआ विद ओलंपिक दे मार्सेई विनिंग बाय 4-0, 4-0 से उसकी जीत हुई और पाकिस्तान से मैं कल खेलेगा। आपके मैसेज ऑन 54991294549912944 पे विशिंग योर डॉल आरुषी वेरी हैप्पी बर्थडे। सो आरुषी को हमारी ओर से हार्दिक बधाइयाँ। 9 साल की हो गई है आपकी बेटी। सो बिटिया रानी को बहुत बहुत गुड विशेज फ्रॉम भैया अर्णव पापा किशन की ओर से। मम्मी साथ में है एंड अगला गीत आप उनके लिए डेडिकेट कर रही है।

0: from Mama Asha. So wishing your Betty, your doll Arushi, very very happy birthday. Of course yaglagit up hum unke naam karenge. And Roshni ka message on 5499-1294 jo is samay haldi mein ja rahi hai aur saath saath sun rahi hai. So sunte rahiye aur chunte rahiye 5499-1294-5499-1294 pe. We have some local news, local star par bhi. ICE Island Cricket Extravaganza के अंतर्गत जो सीजन 4 है उनका ये शुरू हो चुका है सीजन 4 और आज एक मैच खेला गया कल सुबह 9 बजे मापू के SSO क्रिकेट ग्राउंड में AMG पैंथर्स का मुकाबला कॉन्टिनेंटल चीता से होगा और कल ही दिन के 1 बजे वहीं पर कैंपस अब्रोड लायंस टक्कर लेंगे वन हेल्थ जगुआर से जबकि क्षेत्रीय फुटबॉल में पिची गाफवे में कल संडे को एक वीकेंड फुटबॉल फिएस्टा रखा गया है कल दोपहर 3 बजे यंग Tigers versus TBS FC और कल ही 4:30 बजे वहीं पर पिची गाफवे के मैदान पे पिची गाफवे वेटरों का मुकाबला सैटरडे रोवर्स से है और रोशनवा दुदला बीमा सुवेनिया कप के अंतर्गत कल ही 3:30 बजे रोशनवा के मैदान पे ही विल बी हैविंग स्काईलॉक FC versus सिलेक्शन कोटेज आप भी अपना मैसेज भेज सकते हैं हम तक पहुंचाइए और अक्का मॉरिशस तक हम पहुंचाएंगे इन टर्न सो रेडियो मस्ती RM2 आपकी सेवा में 24 घंटे कल सुबह भोली का नहीं एवरी सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 7:30 AM शार्प हमारे आपकी मुलाकात होती है विद लेटेस्ट न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज
1: RM2 रेडियो मस्ती फील द मस्ती

0: ट्रैक उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो प्यार में विश्वास करते हैं। इसलिए अगर इश्क कोई खूबसूरत दुआ है तो मेरी हर दुआ में तुम हो।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: क्योंकि तुम ही हो और तुम ही हो हर शनिवार की रात 7 से 9 के बीच 729 झंकार बीच विद मी विकास रामधनी एंड इट्स अबाउट टाइम जाने का समय आ गया है लास्ट फॉर द रोड कह सकते हैं और इस समय ब्रेंटफोर्ड ऑलरेडी लीडिंग 1-0 अगेंस्ट टोटनहम हॉटस्पर खेल के 12वें मिनट पर कीन लुइस पैचर का एक गोल फॉर ब्रेंटफोर्ड सो इट्स ब्रेंटफोर्ड 1 टोटनहम हॉटस्पर 0 इतने सारे खिलाड़ियों के साथ भी बिकॉज दिस इज सीजन की शुरुआत है आरंभ है सो हौले हौले धीरे धीरे वार्म अप हो रहा है सो लीडिंग ब्रेंटफोर्ड 1 टोटनहम हॉटस्पर 0 उधर स्पेन की लालिगा में मैच समाप्ति पे है 89th मिनट एथलेटिक 1 सेविलिया 3 और इंटर मिलान 1 मोन्जा 0 इटली के सेरी आ में जबकि फ्रांस के लीग ए में खेल के 80वें मिनट पर 79th मिनट पर रेसिंग क्लब द लॉस नाउ लीडिंग बाय 4-2 अगेंस्ट ओसेया इतने सारे गोल बन चुके हैं 6-6 गोल और सो विल कीप यू अपडेटेड कल सुबह 7:30 AM बहुत सारी खबरें आप तक लाएंगे खासतौर पे हमारी जो मॉरिशन चैंपियन है किम्बलेकू डेपिना ने आज तीसरा स्थान लिया ब्रिटेन साइकिलिंग 2 में कल उसने पहला स्थान प्राप्त किया था और इस प्रकार अभी भी जो ग्रीन जर्सी है लीडर की जो जर्सी है वो उसी के पास है और वो अभी 24 सेकंड आगे है कल आखिरी रेस की साइकिल रेस होगी और उसमें सारी उम्मीदें सारी शुभकामनाएं सारे विशेज किम्बली लेकू डेपिना के साथ कम ऑन किम कम ऑन मॉरिशस विजयी हो और जब जब आप विजयी होते हैं तब तब मॉरिशस का नाम रोशन होता है मॉरिशस का नाम ऊंचे ऊंचे इलाकों में ऊंचे ऊंचे शहरों में ऊंचे ऊंचे देशों में वहां पर हमारा नाम गूंजता है सो हैट्स ऑफ टू किम्बली लेकू डेपिना जो मॉरिशस का नाम ऊंचा कर रही है विदेश में भी अभी गत सप्ताह ही टू डिफेंस में भी उसने टॉप 10 में जगह हासिल की थी सो इंग्लिश प्रीमियर लीग की आज शुरुआत हुई जस्ट टू रिकैपिचुलेट आज का जो पहला मैच था अर्ली किक ऑफ अर्ली झटका मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हुई हल सिटी ने उसे 2-0 से परास्त किया और जाने से पहले बता दें कि कल के जो मैच होंगे उनमें कल शाम 5 बजे ब्राइटन का मुकाबला एस्टन विला से कल ही मैनचेस्टर सिटी खेलेगी बोर्नमुथ के विरुद्ध और कल रात 7:30 PM not to miss Newcastle United versus Liverpool so here we go aapke liye ye aakhri geet saath dene ke liye thank you jurne aur chunne ke liye 5499-1294-5499-1294 par aap apna message bhejte rahiye 2400 ghante aapki seva mein this is Radio Masti RM2 signing off aaj ki raat vikas ki or se bye bye shubh ratri sabar khair phir milenge tab tak ke liye namaskar aur शुभ रात्रि।
1: झंकार बीट्स।
2: RM2 रेडियो मस्ती।
1: झंकार बीट्स।
0: सब गोलमाल है, गोल भी है, गोल मार भी है और गोल माल भी है। Leaving you with this fantastic song. पर सब गोलमाल नहीं है स्टे ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मस्ती

दोस्तों, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? भाई विनीत आ गई है साथ देने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. आपके अपने रेडियो मस्ती पर सैटरडे इवनिंग आ चुकी है, मतलब वीकेंड का असली सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. तो चलिए हम और आप मिलकर इस माहौल को बनाते हैं एकदम म्यूजिकल हमारे इस प्रोग्राम के साथ.

गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, ड्राइव कर रहे हैं, काम पर हैं, चिल कर रहे हैं, जहां से भी साथ दे रहे हैं, अभी बैठने का टाइम नहीं है, अभी बस झूमने का टाइम है। ठीक है, तो चलिए हमारे बॉलीवुड के इन धमाकेदार गीतों के साथ मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है।

हमेशा मैं कहती हूँ, एक बार फिर कहती हूँ कि लाइफ में ना टेंशन लेने का ना देने का। ऐसा है कि हम यही मानते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर म्यूजिक के साथ ढूंढे तो ज्यादा जल्दी मिल जाता है। तो स्माइल कीजिए, फील बेटर कीजिए, डांस कीजिए और लाइफ में बस खुशी आने का परमिशन मत लीजिए। जब भी दिल करे खुश हो जाइए, हमारे साथ झूम जाइए।

रेडियो मस्ती के साथ आपका ये म्यूजिकल सफर चल रहा है नॉनस्टॉप विनीता के इन खूबसूरत गीतों का साथ है। रात भी साइलेंट होती जा रही है लेकिन वहीं पे हमारी प्लेलिस्ट जो है ना वो

गेट रेडी, क्योंकि नेक्स्ट हमारे गाने जो हैं अभी आपको सीट से उठाएंगे और आपको डांस करवाएंगे. यस, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ. प्रोग्राम चल रहा है आप ही का लेट नाइट ग्रूव्स.

डियर फ्रेंड्स, कैसे हो, कहां से साथ दे रहे हो, गाड़ी चला रहे हो? ओके, बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, ओके, स्पीड लिमिट पर ध्यान देना, नहीं तो अंकल रोक लेंगे। आपको क्या लगता है, रात को भी अंकल होते हैं रोड पे और फिर उसके बाद जेब से जो पैसे निकल जाएंगे, इसीलिए आराम से, ठीक है?

हमारा ये म्यूजिकल सफर आप विदिता का साथ दे रहे हैं एंड आई जस्ट होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम. चलो गुड टाइम की बात करते हैं, तो वीकेंड में ऐसा ही होता है ना कि लोग अपनी सारी टेंशन भुलाना चाहते हैं. कैसे भुलाएं, कैसे भुलाएं, भुलाएं इसलिए कि आप कुछ सोचे ना. रेडियो का

मैं हूं वेदिता और आप हमें सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स प्रोग्राम में जो कि आपके लिए लेकर आते हैं हम. अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ कि हो गया ना, जानती थी हो जाएगा, तो पहले गाने के साथ ही हो गया था ये, मैंने नोटिस की थी. लेकिन आप क्या थोड़ा सा नखरे करते हो, बड़े लौटी हो.

थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी विदिता लेट नाइट ग्रूव्स. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर, और जितने भी लोग हमें अब्रॉड सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग मी. लव यू. चलिए

म्यूजिकल जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच. मैं हूं वेदिता, आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो मस्ती पर. कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ और याद रखिए म्यूजिक कभी स्टॉप नहीं होता है. गुड नाइट, टेक केयर और मिलते हैं आपसे कल एक और ऐसे प्रोग्राम के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: You're listening to RM2, a Radio Mastiche.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या भी?

ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते